FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1949 के ज्येष्ठ माह की 8वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 29 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:59 और 11 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम में अतः दीपो भव विषय पर आज के विचार।
3: रहता हूँ कि बिजली चली जाती है, अचानक अंधकार में डूब जाता हूँ, मेरी छाया भी मुझसे अलग लुप्त हो जाती है, अक्षर भी कालिमा छोड़कर गुमसुम हो जाते हैं। अब मैं हूँ, हाथ में मौन मेरी कलम और मेरे भीतर विचारों का एक उमड़ता हुआ ज्वार, बाहर अंधकार का सागर, भीतर विचारों का समुद्र। खोजता हूँ कि इन दोनों के बीच कहीं प्रकाश है। जब छाया भी जुदा हो जाए, अपने साथ छोड़ दें, कुछ भी नहीं सूझता, कर्मठता शिथिल पड़ जाए, शायद यही ना कि विपत्ति की स्थिति है और अंधकार का प्रतिफल। इसीलिए तो अंधकार विपत्ति का प्रतीक हो गया है, महान दुखों का सूचक। अंधा लोग क्यों कहते कि उसके घर का चिराग गुल हो गया। चिराग गुल हुआ कि कुछ सुझाई नहीं पाता, फिर भी चाणक्य के अंधों में मैं नहीं आता। न पश्यन्ति च जन्मांधा कामांधो नैव पश्यन्ति, मदोन्मत्ता न पश्यन्ति अर्थी दोषम न पश्यन्ति। जन्मांध को सुझाई नहीं देता, कामांध को भी नहीं, मदोन्मत्त को भी नहीं और अर्थी को भी नहीं। विश्वास मानिए इन चारों की पंक्ति में मैं नहीं आता, फिर भी इससे मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। कैसे कहूँ कि चाणक्य को नहीं मालूम था कि सूझनों का संबंध जो है प्रकाश से, प्रकाश की उपस्थिति ही सूझना और प्रकाश का अभाव न सूझना अंधता। वो तो प्रकाश को नकारना है। आंखों में यदि पर्दा है तो हजारों सूर्य के प्रकाश में भी हम अंधे, विचारों पर यदि पर्दा है तब भी हम अंधे। चाणक्य ने शायद दूसरे

0: दूसरे प्रकार की अंधता का संकेत किया है। जो हो, मैं समय अंधेरे में हूं, वस्तुतः अंधकार का कोई अस्तित्व तो नहीं है, वो तो मात्र प्रकाश का अभाव है। अस्तित्व तो है प्रकाश का, जो ज्ञान का भी प्रतीक है, परमात्मा का भी है, हमारी अस्मिता का भी। तभी तो वैदिक ऋषियों ने कहा था, तमसोमा ज्योतिरिगमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसी बीच मां की आवाज सुनाई देती है, अंधेरे में बैठे बैठे क्या कर रहे हो, एक दिया क्यों नहीं जला लेते। लगता है मेरी मां के साथ मैडम फिशर भी मुझसे कह रही हैं, अंधकार को कोसने से कहीं अच्छा है एक दिया जलाना। यही आवाज बार बार मुझसे टकराती है और धीरे धीरे उससे उभरती हुई एक सौम्य आकृति देखता हूं तथागत की मन की आंखों से। कुशीनगर में शाल वृक्ष के नीचे तथागत लेटे हैं, उन्हें मर्मांतक पीड़ा हो रही है, पर वे बड़े सहज भाव से उसे झेल रहे। एक करोड़ बदली अपने शिष्य आनंद से कहा, जल पिलाओ। आनंद जल ले आया, उसने पिलाया। पीने के बाद बोले, बेटे अब मेरा समय पूरा हुआ। आनंद विचलित होता, वो तथागत के पास रह न सका, दूर एक वृक्ष के नीचे बैठ रोने लगा। उसकी सिसकियां पीता हुआ सन्नाटा धीरे धीरे गंभीर हो गया। भगवान ने फिर करवट बदली, उन्हें आनंद नहीं दिखाई पड़ा तो दूसरे से पूछा, आनंद कहाँ है। महाराज वो दूर वृक्ष के नीचे बैठा रो रहा है। क्यों रो रहा है। तथागत की मुद्रा अत्यधिक शांत थी, उसे बुलाओ। आनंद आए तो भगवान बोले, क्यों रो रहे हो। भगवान आप जा रहे हैं, अंधेरा हो रहा है। भगवान की प्रशांत मुद्रा जरा भी मुस्कुराई न, उसमें कोई और अंतर आनंद, न मैं कहीं से आया था न कहीं जा रहा हूं। 80 साल का हो गया, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, और अंधेरा कहां है। आनंद चुपचाप खड़ा रहा, आंखें पसीसती रहीं। सारा साहस बटोर कर उसने धीरे से कहा, आप नहीं रहेंगे प्रभु, तब हमें रास्ता कौन दिखाएगा, कौन प्रकाश देगा। अपदीपो भव, भगवान ने कहा, मैंने जो कुछ कहा उसे भूल जाओ, तुम्हारे पूर्वजों ने जो कहा उसे भी भूल जाओ, केवल अपने अंतःकरण पर विश्वास रखो, विवेक पर विश्वास रखो। दूसरे के प्रकाश के भरोसे रहने से अच्छा है कि अपने दीपक स्वयं बनो। अपदीपो भव, और अपना पंथ स्वतः आलोकित करो। तथागत का महाप्रस्थान हुआ। आनंद ने अपने आंसू पोछे या नहीं ये तो पता नहीं, पर मैं वह अंधकार को नहीं कोसता, क्योंकि अब मैं दीपक जलाने में विश्वास करता हूं।
1: अपदीपो भव, अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर आज के विचार। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6:10 हुए हैं। आइए सुबह की इस पावन और पवित्र बेला में लेते हैं सबसे पहले उस प्रभु का नाम जो बनाता है सबके बिगड़े काम, और शुरू करते हैं आज की आराधना।

पवित्र आदर्शों का भाव हमारे मन में जागृत हो, इसलिए हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान, हमारी सहायता करें। हमारे हृदय रूपी आकाश में सदा ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित रहे, इसलिए हे प्रभु, हमें अभीष्ट ज्ञान का आभास कराएं।

भक्ति प्रेम और माधुर्य से भरा राधा नाम का जहाँ सुमिरन होता है वहाँ प्रेम और शांति स्वयं चली आती है। इन्हीं दिव्य भावनाओं का स्मरण करते हुए आनंद लेते हैं इस भक्ति वंदन का।

हे ईश्वर, आपकी ऊर्जा हमारे इस नश्वर जीवन का, हमारे प्राणों का संभल बने। आपका तेज, आपकी ओजस्विता से हमारे अंतःकरण उज्ज्वल बने। बस आपसे यही प्रार्थना है।

हरी स्मरण से मन निर्मल होता है और राम नाम से जीवन उज्जवल। मर्यादा, प्रेम और सत्य के प्रतीक प्रभु श्री राम का नाम हर भक्त के हृदय में नई ऊर्जा भर देता है। तो चलिए श्रोताओं, भक्ति और श्रद्धा के इस मधुर पल में सुनते हैं एक और श्री राम भजन।

कौन है पांच लुटेरे जो दिन रात हम सब की वास्तविक संपत्ति को लूटा करते हैं, और इन पांचों लुटेरों को हम अपने साथ रखते हैं, इनका पालन पोषण करते हैं, ये हमें लूटते रहते हैं। इन्हें पहचानिए, इनसे दूर रहिए, नहीं तो सब लूट के ले जाएंगे एक दिन।

इसी भक्ति वंदन के साथ श्रोताओं संपन्न होती है हमारी आज की आराधना। आज इस कार्यक्रम में आपने आनंद लिया लता मंगेशकर, शर्मा बंधु, सुरेश वाडकर, अनूप जलोटा और साथियों के गाए कुछ भक्ति वंदनों का। अभी आप आनंद ले रहे थे भक्ति संगीत कार्यक्रम का। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए आज की बात। दोस्तों, इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं बल्कि आने वाले कल की सीख भी है। इस तारीख, जी हाँ, हर तारीख अपने भीतर कुछ ऐसी घटनाएं समेटे हुए होती है जिन्होंने दुनिया की दिशा और सोच बदल कर रख दी और अपने समय में नई मिसाल कायम की। आज की बात कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त कविता। सभी को प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, तारीख 29 मई, वर्ष 1953 और दिन के 11:30। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नॉर्गे ठीक इसी पल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहली बार पहुंचे थे। जी हाँ, पहली बार। पूरी दुनिया इस पल को ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर सम्मानपूर्वक आज भी याद करती है। दोस्तों, यह अभियान ब्रिटेन की ओर से था। पूरी दुनिया को ये खबर 4 दिन बाद 2 जून को मिली थी। समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। बेहद सर्द मौसम, सीधी चढ़ाई और बर्फीले तूफानों की वजह से काफ़ी प्रयासों के बाद भी इस चोटी पर कोई भी इंसान उस समय तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन मजबूत इरादों से भरे एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग ने यह विश्वसनीय कारनामा वर्ष 1953 में आज ही के दिन कर दिखाया और इसी के चलते हम आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट डे मनाते हैं। दोस्तों, वर्ष 1919 में आज ही के दिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रथम परीक्षण किया गया था। इस थ्योरी को आधुनिक विज्ञान की आधारशिला माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी इस थ्योरी को बड़े ही सरल रूप में लोगों के सामने रखा। मजाक के स्वर में उन्होंने कहा, जब आप अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ 1 घंटे तक बैठे रहते हैं तो 1 घंटा भी 1 मिनट जैसा लगता है, लेकिन जब आप किचन में हॉट स्टोव पर कुछ मिनट के लिए भी काम करते हैं तो कुछ मिनट भी 1 घंटे से ज़्यादा प्रतीत होते हैं और यही सापेक्षता यानी रिलेटिविटी है। दोस्तों, वर्ष 1906 में आज ही के दिन मशहूर निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म हुआ था। कन्हैयालाल मिश्र ने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले कई प्रसिद्ध निबंध लिखे।

नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई और माटी हो गई सोना, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में गहरी दिलचस्पी लेने के कारण कन्हैया लाल को अनेक बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी। श्रोताओं, वर्ष 1960 को हिंदी सिनेमा की एक बेहतरीन फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था मुगले आजम। हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्मों में गिनी जाने वाली इस प्रसिद्ध फिल्म का एक डायलॉग भी उतना ही प्रसिद्ध हुआ था जितनी की फिल्म। अकबर कहते हैं, सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे, और डायलॉग के पीछे आवाज थी मशहूर एक्टर पृथ्वीराज कपूर की, जिनकी आज है पुण्यतिथि। दोस्तों, भारतीय सिनेमा जगत के युग पुरुष पृथ्वीराज कपूर वर्ष 1972 में आज के दिन पंचतत्व में विलीन हो गए थे। मुगले आजम, आवारा, सिकंदर, आज और कल, दहेज, प्यार किया तो डरना क्या, आलमारा, विद्यापति, इनके कुछ प्रमुख फिल्में हैं। पृथ्वीराज कपूर ने अपने करियर में लगभग 90 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें 1969 में पद्मभूषण और 1971 में मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपनी कड़क आवाज़, रौबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग 4 दशकों तक सिने दर्शकों के दिलों पर पृथ्वीराज कपूर ने राज किया। तो दोस्तों, ये तो थी आज की बात। अब सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। विविधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता का प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, 29 मई वर्ष 1953, जी हाँ, आज ही के दिन एक ऐसी तिथि जिसने दुनिया को एक ऐतिहासिक मानवीय उपलब्धि का आकलन करवाया। आज ही के दिन न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिन शेरपा ने विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की 29 मई 1953 को। श्रोताओं, सुबह लगभग 11:30 पर सर एडमंड और तेंजिन शेरपा ने न केवल पर्वतारोहियों का भय मिटाकर सम्मान से सिर ऊंचा करने का साहस उन्हें प्रदान किया, बल्कि दृढ़ संकल्प, अदम्य साहस, सहनशक्ति का परिचय पूरे विश्व को दिया। इस अभूतपूर्व अकल्पनीय मानवीय उपलब्धि और साहस का सम्मान करने के लिए नेपाल सरकार ने महान पर्वतारोही एडमंड हिलेरी के निधन के बाद वर्ष 2008 में इस दिन को, यानी 29 मई को, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जो आज तक चलता आ रहा है। दोस्तों, ये पर्वत श्रृंखलाएं, ये पहाड़ जो हमेशा से ही स्थायित्व के शाश्वत प्रतीक हैं, जो हर पल मनुष्य के लिए अडिग और अदम्य क्रियाकलापों का एक संदेश देते हुए आ रहे हैं और हमेशा साहस के साथ खड़े रहते हैं, और हमें भी ये सिखाते हैं कि हमें भी अपनी कठिनाइयों के आगे साहस के साथ खड़े रहना चाहिए। उनका संरक्षण उतना ही आवश्यक है। विश्वसनीयता के साथ दोस्तों, हमें अपने पहाड़ों के संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। माउंट एवरेस्ट का नाम दोस्तों जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया, जो 1830 से 1843 तक भारत के सरकारी सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे और हिमालय पर्वत श्रृंखला को मापने वाले पहले व्यक्ति भी। दोस्तों, मानव जगत के रोमांच की भावना और मानव जाति के प्रयास की प्रस्तुति हमें पर्वत श्रृंखलाओं और पर्यावरण को एक अलग तरीके से देखने का मौका देती है। ये तिथि दोस्तों हमेशा से ही केवल पर्वत पर विजय प्राप्त करने का दिन नहीं रही है, बल्कि ये तिथि हमेशा याद दिलाती है कि दृढ़ता के साथ, साहस के साथ हम अपने भीतर के भय को कैसे दूर हटा सकते हैं और आगे बढ़कर दूसरों के

0: काम आ सकते हैं। और साथ ही ये दिन पर्वत सुरक्षा और हिमालय के पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने का भी काम करता है। दोस्तों, सन 1965 में भारतीय सेना के कैप्टन अवतार सिंह चीमा माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं। वहीं बछेंद्री पाल इस चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। दोस्तों, ये तो छोटी सी बात चीत थी आपके साथ विविधा कार्यक्रम में माउंट एवरेस्ट डे के बारे में। कल आपसे इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे विविधा कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः की 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप संस्कृत समाचार और हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने जनजातीय प्रतिनिधिभिः सह मिलितवान्। ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य जनजातीय सुरक्षा कल्याण मञ्चस्य विषये सामाजिक सञ्चार माध्यमेन श्रीमोदी उक्तवान् यत् आदिवासी समुदायं प्रति तस्य समर्पणं यथार्थतया प्रशंसनीयम्। केन्द्रीयः गृहसहकारिता मन्त्री अमितशाहः पुनरेकदा अवैधप्रवासिनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां दृढतया प्रतिपादितवान्। गतवासरे गुजराते गांधीनगरे 40,30,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, अनन्तरं जनसभां सम्बोधयन् श्री शाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः शासनेन एक सप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षाबलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्मवार्षिक्याः अवसरे गृहमंत्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धांजलिं प्रदत्तवान्। गुजरात राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्री शाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रान्तरे सः अहमदाबाद नगरे आगामिनि ओलंपिक क्रीडानां, कॉमनवेल्थ क्रीडानां, विश्वरक्षक क्रीडानां, अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षाम् अकरोत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः आरक्षक बलाय बोधितवती यत् आरक्षकाः अधिकं नागरिकाभिमुखाः भवेयुः, अपि च समाजस्य दुर्बलवर्गाणां, विशेषतः महिलानां, निर्धनानां, बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः गतवासरे गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरण संचलने सिक्किमारक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपतिध्वजसम्मानं प्रदाय एवं उक्तवती। तया राज्ये विधिव्यवस्थायाः पालने सहैव आपत प्रबंधने सिक्किमा रक्षक दलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य आरभ्य अस्य मासस्य 31 दिनांक पर्यन्तं कर्णाटक गोवा केरल राज्यानां त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। अद्य सः कर्णाटके बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इत्येतस्य संस्थानस्य 45 वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते वैश्विक समारोहे सहभागं करिष्यति। तदनन्तरं सः कर्णाटकस्य दावणगेरे स्थितस्य विश्वविद्यालय बीडीटी अभियांत्रिकी महाविद्यालयस्य प्लैटिनम जुबली इति महारजत जयन्त्युत्सवे अपि सहभागं करिष्यति। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इत्यसौ गतवासरे लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिकरूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् सः प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिकरूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं

0: नूतन मुख्यमंत्रिणः पदभार ग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्। यतोहि विधानसभायां 38 अधिक 100 विधायकानां समर्थनेन कांग्रेस दलस्य पूर्ण बहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीय अर्थविभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तर पश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपय क्षेत्रेषु अतिताप घटनायाम् अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु, आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य उपान्त्यचक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं 7:30 आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया

0: किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारे देहरादून केंद्र से। दोपहर 1:30 पर होगा NCERT द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुबह 7:10 पर अब से कुछ ही देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। गांधी चर्चा का समय रहेगा सुबह 7:50। दोपहर 12:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे महिलाओं का कार्यक्रम घर संसार। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा आकाशवाणी से जुड़ी सुनहरी यादें। 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री JP गुप्ता की वार्ता। वार्ता का विषय रहेगा धान की फसल का हानिकारक कीटों से बचाव। युवाणी कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 5:15 पर। इस कार्यक्रम में आज की बात होगी पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता विषय पर। उत्तरायण कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 5:45 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी मिशन लाइफ कैसे काम करें कचरा कम। ग्राम जगत कार्यक्रम संध्या 7 बजे। इस कार्यक्रम में आज की बातें होंगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विषय पर और चर्चा होगी समन्वित मत्स्य पालन के लाभ विषय पर। शास्त्रीय संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 8:30 पर और सबरंग कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 10:05 पर। सुगम संगीत का आनंद आप लेंगे सुबह 1:15 पर और रात्रि 10 बजे। सबरस कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। कुमाऊनी लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे लोकमंजरी कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विनोद राम के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत और शैलश्वर कार्यक्रम में संध्या 5:05 पर कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे लोकसुर कार्यक्रम में सुबह 11:30 पर और दोपहर 2 बजे उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम में। भक्ति संगीत का आनंद आप लेंगे संध्या 6:41 पर। श्रोताओं, फिल्म संगीत हमारे केंद्र से हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में। सुरबहार कार्यक्रम में 10:35 पर। सैनिकों के लिए कार्यक्रम में सुबह 11 बजे। मेरी पसंद कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे और एक ही फनकार कार्यक्रम में दोपहर 2:45 पर। सदाबहार फिल्मी गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे अपराह्न 3 बजे। फिल्म संगीत संध्याकालीन सभा में आप सुनेंगे 7:40 पर। इंद्रधनुष कार्यक्रम में फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे 9:15 पर और रात्रि 9:30 पर आपके अनुरोध कार्यक्रम में। फिल्म संगीत एक बार फिर से होगा रात्रि 10:30 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान पाठ से आज का प्रसंग। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडकर और संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में लगे हैं। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है। घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन के श्यामवर्णी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान पाठ का 108वां भाग। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 7:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे देहरादून केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। देहरादून में भाजपा की प्रदेश मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक संपन्न। संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति पर चर्चा। अल्मोड़ा में एनसीसी कैडेट्स के 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में युवाओं को सेना के प्रति जागरूक किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस वर्ष सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया। किसानों को सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की सलाह। और मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों में आज अतिवृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में ना रहे। उन्होंने बताया कि PMAYG के तहत 4,95,00,000 आवास के लक्ष्य के मुकाबले 3,91,00,000 आवास को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता और कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा जीत की हैट्रिक बनाएगी। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क अभियान और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने पर भी मंथन हुआ। बैठक में संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास को नई गति देने के संकल्प को और मजबूत बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिन बूथों पर पिछले चुनाव में पार्टी को कम वोट मिले थे, वहां कोर कमेटी के सदस्य प्रवास करेंगे। वे स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करेंगे।
1: बैठक संपन्न हुई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी वाला मार्ग किया। मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे, उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे 23 सदस्य है। 2-2 दिन के प्रवास पर कुछ विधानसभाओं के अंदर रहेंगे और 2 दिन के प्रवास में वो जहाँ उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे, वहीं बूथ पर भी जाकर विधानसभा की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को सुझाव भी देंगे।
0: राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में कुमाऊं मंडल स्तरीय एनसीसी कैडेट्स के लिए 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिलों के एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स को ड्रिल, ड्रोन संचालन, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, राइफल हैंडलिंग और फायरिंग का प्रशिक्षण दिया गया। 24 यूके गर्ल्स बटालियन की कमान अधिकारी कर्नल पीवी कुलकर्णी ने बालिकाओं को सेना में भर्ती से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनसीसी शिविर युवाओं में सेना के प्रति जागरूकता बढ़ाने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में प्रेरित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

0: एनुअल ट्रेनिंग कैंप में सभी कैडेट्स के लिए एक अद्भुत अवसर दिया गया है कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, अपने सेना के प्रति जागरूकता का, व्यक्तित्व के विकास का और विकसित भारत 2047 की ओर अग्रसर होने का। पिछले 10 दिन में हमने इस CATC के दौरान सभी कैडेट्स को अनेक गतिविधियों के बारे में एक्सपोजर दिया है, जैसे होलिस्टिक हेल्थ, टेक्निकल ट्रेनिंग, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और इसके अतिरिक्त जो मेन है टीम वर्क एंड, इनके बारे में उनको अनेक प्रकार से अनेक गतिविधियों में उनको इन्वॉल्व किया गया है।
1: शिविर में योग प्रशिक्षण, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद, क्विज और पैनल डिस्कशन सहित अन्य गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन अब पहले से कहीं अधिक सरल और पारदर्शी हो गया है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से पेंशनर अब घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापित कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 1.5 लाख पेंशनर हैं, जबकि देहरादून में 22,000 से अधिक पेंशनर निवास करते हैं। 1 अप्रैल 2024 से अब तक इस केंद्र में 1,84,000 से अधिक पेंशनरों का डिजिटल सत्यापन किया जा चुका है। देहरादून के मुख्य कोषाधिकारी नीतू भंडारी ने बताया कि पेंशनरों की सुविधा के लिए कोषागार में पेंशनर फैसिलिटेशन हॉल स्थापित किया गया है, जहां उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों के पेंशनर जो वर्तमान में देहरादून में रह रहे हैं, वे भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
2: तो वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनरों को डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान करने का निरंतर सदर कोषागार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसे तो हमने कोषागार में एक पेंशनर फैसिलिटेशन हॉल का निर्माण करा है, जिसमें पेंशनरों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र कैसे जमा करना है उसका निरंतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जो पेंशनर कोषागार में आते हैं उनका प्रमाण पत्र भी हम लोग ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करते हैं। इसके लिए ई जीवन प्रमाण ऐप और आधार फेस आरडी ऐप का उपयोग किया जा रहा है और बहुत ही ये जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का आसान तरीका है, जिसे घर बैठे ही पेंशनर अपना प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून इस वर्ष समय पर या उससे कुछ पहले दस्तक दे सकता है। विभाग ने इस बार सामान्य से थोड़ी कम वर्षा का अनुमान जताया है। पंतनगर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत सिंह नैन ने बताया कि इस वर्ष लगभग 92% वर्षा का अनुमान है, जो सामान्य से करीब 8% कम है। उन्होंने कहा कि कम बारिश का असर कृषि फसलों पर पड़ सकता है। वर्तमान में मक्का और गन्ने की फसल गर्मी में अच्छी पैदावार देती है, लेकिन किसानों को सिंचाई में कमी नहीं होने देनी चाहिए। अधिक तापमान के कारण वाष्पीकरण तेजी से हो रहा है। डॉक्टर नैन ने कहा कि आम और लीची की फसलों को गर्मी से बचाने के लिए किसान रेनगन, स्प्रिंकलर और ड्रोन के माध्यम से पानी की फुहार का इस्तेमाल करें, साथ ही पेड़ों की जड़ों में पर्याप्त नमी बनाए रखें।
4: फसलें हैं उनको इरिगेट करते रहें और विशेषकर जो हमारी लीची की फसल है, पौधे हैं उसमें, चूंकि लीची अब थोड़ी थोड़ी लाली मौसम आने लगी है और अब 10 से 15 दिन में वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको हीट स्ट्रोक नहीं लगना चाहिए। तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो जो हमारा फल है वो कहीं ना कहीं काला पड़ जाता है, तो ऐसे में ये जरूरी है कि हम तापमान को किसी तरह से कम रखें। और जो ये पूरे दिन बढ़ता है और 2 से 3 के बीच में सर्वाधिक होता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में अगर हम पानी का छिड़काव कर पाएं फसलों के ऊपर तो तापमान कम रहेगा, ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, तो उसमें क्रैकिंग वगैरह की जो समस्या है वो नहीं होगी, फल की क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी।
1: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल रात झमाझम बारिश हुई है। तेज हवाओं और बारिश से तापमान में कमी आई है, जिससे लोगों ने भीषण गर्मी से राहत दी है। मसूरी में कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की खबर है। इस बीच मौसम विभाग ने आज देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं तेज हवाएं, आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शेष जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। विभाग ने इस अवधि में 4 धाम यात्रियों और प्रदेशवासियों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम खराब होने

की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की सलाह दी है। अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। भाजपा कोर कमेटी बैठक को आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। इस खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है, जहां रह गई थी कोर कसर वहां जाएगी कोर कमेटी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल की तर्ज पर ताल ठोकेगी भाजपा। प्रदेश में मौसम की करवट पर दैनिक जागरण लिखता है, देहरादून में देर रात राहत की बरसात। एक अन्य खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी कुर्सी, शिव कुमार होंगे सीएम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने प्रधानमंत्री

0: राशि जारी की। देहरादून में भाजपा की प्रदेश मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक संपन्न। संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति पर चर्चा। अल्मोड़ा में एनसीसी कैडेट्स के 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में युवाओं को सेना के प्रति जागरूक किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस वर्ष सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया। किसानों को सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की सलाह। और मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों में आज अतिवृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विनोद राम के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में आप आनंद ले रहे हैं विनोद राम के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीतों का।

विनोद राम के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ अब आज का हमारा लोकमंजरी कार्यक्रम श्रोताओं यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है गांधी चर्चा।

0: सबसे पहले आप सुनेंगे बापू के विचार।
1: हमारे शरीर अनंत हैं, किंतु हमारी आत्मा एक है। सूर्य की किरणें परावर्तन के कारण विलक लगती हैं, किंतु उनका उद्गम एक है। मनुष्य पशु से विकसित हुआ है, इसीलिए उसमें मानवीयता भी है। मनुष्य न पशु है न ईश्वर, वो मनुष्य ही है, क्योंकि वो दिव्यता की ओर विकास अथवा पशुता की ओर अधोगति से किसी एक को चुनने की स्वयं शक्ति रखता है। दिव्य होने के अर्थ हैं समस्त सृष्टि से मानसिक भावात्मक तथा कर्म की एकता। मनुष्य स्वभाव अपने उत्तम रूप में तभी प्रकट होता है जब वो सब अवस्थाओं में सबके प्रति एक सा बर्ताव करते हुए दिव्यता की दिशा में अग्रसर होता है।
0: मनुष्य स्वभाव उसी दिन अपने आप को पहचानेगा जिस दिन उसे इस तत्व की प्रतीति होगी कि मानवता का अर्थ पशुता अथवा क्रूरता का संपूर्ण विनाश है। मैं मनुष्य स्वभाव का एक बड़ी हद तक सूक्ष्म अध्येता हूं और अपनी त्रुटियों का सूक्ष्म विवेचक भी। मैंने जान लिया है कि मनुष्य जिन वादों का प्रतिपादन करता है वो उनकी अपेक्षा महान है। पशु को स्वभावतः संयम का ज्ञान नहीं होता और मनुष्य संयम कर सकता है। वो उसी हद तक मनुष्य है जिस हद तक अपने ऊपर अंकुश रखता है। त्याग मनुष्य को पशु से भिन्न बनाता है। मनुष्य ठीक उसी अनुपात में महान है जिस अनुपात में वो समाज के कल्याण की दिशा में प्रयत्नशील है।
1: मनुष्य और ईश्वर यहां तक कि जीव मात्र तत्त्वतः एक हैं। मनुष्य ईश्वर की प्रतिमूर्ति है। हमें अनेक अपने गौरव को नहीं जानते। इससे इतना ही अंतर पड़ता है कि वे अपने गौरव से लाभान्वित नहीं हो पाते। यदि किसी सिंह शावक का लालन पालन मेमनों के बीच हुआ तो संभव है उसे अपने स्वरूप का ज्ञान न हो और वो उसके लाभ से वंचित रह जाए। जिस दिन जिस क्षण उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा वो अनायास ही अपने वातावरण का राजा बन जाएगा। किंतु यदि कोई भेड़ उसे अपने बीच में देखकर अपने आप को सिंह समझे तो उससे कुछ नहीं होता।
0: कदाचित प्रारंभ में हम सब पशु थे। मैं इस बात पर विश्वास कर सकता हूं कि हम पशु से बहुत धीरे धीरे विकसित होकर मनुष्य बने। हमें ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने के रास्ते में से एक को चुनना पड़ता है, किंतु चूंकि हमारे भीतर पशु का निवास है ऊपर के बजाय नीचे का रास्ता चुन लिया जाना आसान है। और विशेषतया उस परिस्थिति में जब हमारे आसपास उसके गुण गाए जा रहे हो। जिस प्रकार पशुओं में शक्ति अथवा हिंसा का बोलबाला है हमारे समाज में प्रेम अथवा अहिंसा को वैसा ही स्थान मिलना चाहिए। पशु की आत्मा अज्ञानग्रस्त है। वो शारीरिक शक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी शक्ति को भी नहीं जानती। मनुष्य का गौरव आत्मा

0: की शक्ति के उच्च नियम का अनुसरण करने में है। मनुष्य का अंतरात्मा से साक्षात्कार हुआ कि वो फिर हिंसक नहीं रह पाता।
1: ये सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य ईश्वर की प्रतिमूर्ति है, इतना जानना जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में उसकी झलक पा सकता है। मनुष्य को ऊपर उठाने वाले धार्मिक नेताओं और पैगंबरों में ईश्वर का दर्शन नहीं होता, ऐसा कौन कह सकता है? मानवीयता और एकता की एक रूपता के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप हम समझ सकते हैं कि हम इसे सच माने तो पहली बात ये होगी कि हमें ऐसी कुछ धारणा छोड़नी पड़ेगी जिसके अनुसार आसपास के सारे लोगों को कष्ट में छोड़कर व्यक्तिगत रूप से आत्मिक विकास की संभावना में विश्वास किया जा सकता हो। यदि एक भी व्यक्ति की आत्मा उन्नत होती है तो सारे संसार की आत्मा कुछ न कुछ उन्नति होती है। ऐसा कोई भी सद्गुण नहीं है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के कल्याण तक सीमित हो, और इसके विपरीत ऐसा कोई भी नैतिक अपराध नहीं है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपराधी के अतिरिक्त अन्य अनेक लोगों को प्रभावित न करता हो। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसी की जिम्मेदारी नहीं है, सारे समाज बल्कि संसार की जिम्मेदारी है।
2: लीजिए सुनिए एक भजन।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पल

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
3: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
4: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर

0: हार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज, जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय

0: में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने CBSE प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच

0: Uncertainty in West Asia, and in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM band 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग ललित।

से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग ललित। आपके साथ तबला संगत की है अनिंदो चटर्जी ने।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग ललित। आपके साथ तबला संगत की थी अनिंदो चटर्जी ने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: जागृति शर्मा।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठ की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई है। गृह मंत्री आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा मौत मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने होगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में जगह बनाई है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह की 9:05

फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस फिल्म संगीत के बेहतरीन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। सुनने वालों को कविता का प्रेम भरा नमस्कार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम में सुखविंदर सिंह और साथियों का गाया कच्चे धागे फिल्म का गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इस गीत को सुरों में पिरोया था नुसरत फतेह अली खान ने। इस गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र भेजा था आप सभी ने। ताजपुर मोरवा से भाई कारी राय, श्रीमती मीना कारी, पुंज राज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, जयंत कुमार बैरागी। इस गीत के लिए फरमाइश आप सभी की भी थी। फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित, मिसर मोहल्ला से भाई फट फाटिया झा, गुंजन परासर, अमित, सुमित, छोटू, बी के सुर और इनके परिवार के सभी सदस्य, सरगुंजा मैनपाठा से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदीबा थापा,

बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, शफरुद्दीन कुमार वली कुमार डब्लू, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। और इस गीत के लिए एक और खत हमारे पास आया है, राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता और रिद्धि गुप्ता का। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता और पंखुरी गुप्ता का। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मय, राज और गुनगुन का। दोस्तों, कहा जाता है कि अच्छे गीत या कहा जाए कोई भी गीत, फिल्मी गीत कभी पुराने नहीं होते। संगीत हमेशा ही वक्त के साथ बदलते रहता है, दौर बदलता है, लेकिन दिल छूने वाली धुनें हमेशा ही जिंदा रहती हैं हमारे दिलों में। तो आइए अब कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाते हैं एक और दिल छू लेने वाली ये धुन बटवारा फिल्म से। इस गीत को आवाज़ें दी हैं अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और अनुराधा पौडवाल ने। गीत लिखा है हसन कमाल ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत के लिए फरमाइश आप सभी की जमशेदपुर से हरिजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। इसी गीत के लिए फरमाइश आप सभी की वंदना नगर एयरपोर्ट रोड से गरीब नवाज कॉलोनी से पूजा, बबीता, शोभा, रेखा, रघुवंशी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, परी, ललिता, गणेश, कार्तिक, नारायण और इनके ढेर सारे दोस्तों की। इसी गीत के लिए फरमाइश आप सभी की जिला खांडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य, नीतू वैद्य, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर बंटवारा फिल्म का गीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम में आप सभी को सुनवाते हैं समीर का लिखा, अलका याग्निक और अभिजीत का गाया बादशाह फिल्म का गीत। इस गीत को सुरों में पिरोया है अन्नू मलिक ने और सुनना चाहा है आप सभी ने। शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, शाजदा रानी और हिना कौसर। इसी गीत के लिए पत्र हमारे पास एक और आया है कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज का। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा का। आप सभी ने भी इस गीत की फरमाइश की है। कोल सिटी बरकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और अफजल इब्राहिमी, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत के लिए फरमाइश आप सभी की यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकर, योगेश मालाकर, सुनीता मालाकर और मुस्कान मालाकर।

अभी आप सुन रहे थे बादशाह फिल्म का गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अलका याग्निक और शान की आवाज़ों में बस इतना सा ख्वाब है फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा है गोल्डी बहल और श्यामराज ने, संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने और इस गीत के पसंदकर्ता हैं आप सभी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। इसी गीत के लिए फरमाइश आप सभी की भी है। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। तो आइए आप सभी को सुनवाते हैं बस इतना सा ख्वाब है फिल्म का गीत।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
2: RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
4: आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आप सभी को सुनवाते हैं शान और श्रेया घोषाल का गाया एक विवाह ऐसा भी फिल्म का गीत। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का, और इस गीत के लिए फरमाइश आप सभी की बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन, भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नू, लाल रजक, मुरली छत्री, जैन मंदिर वाली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर एक विवाह ऐसा भी फिल्म का गीत।

अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और सोनू निगम की आवाज़ों में वीर फिल्म का गीत। इस गीत के लिए फरमाइश आप सभी की थी हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियांक शर्मा, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवाया मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी और साथी, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, महेश चंद्र डांगी। और इसी गीत के लिए फरमाइश आप सभी की थी हल्द्वानी से गंगा सिंह रावत और इनके परिवार के सदस्यों की। श्रोताओ, इसी गीत के साथ अब आज का हमारा फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गीत निर्जर हमें यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। कल फिर इसी कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आएंगे आपकी फरमाइश के कुछ गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत निर्चय। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह की 10 बजने वाली हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसंख्या के बदलावों के लिए जांच की गठित समिति, उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के

0: लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कल त्रिशा शर्मा मौत मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है गीत और गजलों का कार्यक्रम सबरंग।

हरिहरन का गाया ये गीत अभी आप सुन रहे थे सबरंग कार्यक्रम के आरंभ में। आइए अब आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की गाई गजल

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप आनंद ले रहे हैं सबरंग कार्यक्रम का।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
0: चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: आइए सबरंग कार्यक्रम के समापन में एक बार फिर से सुनते हैं जगजीत सिंह को।

जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ अब आज का हमारा सबरंग कार्यक्रम श्रोताओं यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में आप देहरादून केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मई तथा 1 जून को चमोली जिले की सीमांत नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन उच्च हिमालयी साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और सीमांत क्षेत्रों की सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक विरासत को राष्ट्र स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत तिब्बत सीमा के निकट स्थित नीति घाटी अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, उच्च हिमालयी भूभाग और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जानी जाती है। नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के माध्यम से देश भर से आने वाले प्रतिभागियों को इस क्षेत्र की प्राकृतिक भव्यता, रोमांचकारी ट्रैक और स्थानीय संस्कृति से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कंडारस्यों और विडोली पेयजल योजना 1 माह में पूर्ण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। देहरादून में अपने शासकीय आवास पर आयोजित बैठक में उन्होंने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विडोली ग्राम समूह पेयजल पंपिंग योजना, कंडारस्यों, भीड़ा, हसुंडी और एनआईटी पेयजल पंपिंग योजनाओं का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इसके अलावा श्रीनगर के नगरीय क्षेत्र में

0: बैठक में उन्होंने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विडोली ग्राम समूह पेयजल पंपिंग योजना, कंडारस्यू, भीड़ा, हसुंडी और एनआईटी पेयजल पंपिंग योजनाओं का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इसके अलावा श्रीनगर के नगरीय क्षेत्र में भी पेयजल समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। मंत्री ने अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत मसूरी विधानसभा क्षेत्र के संतला देवी में नून नदी पर प्रस्तावित झील निर्माण की कागजी कार्रवाई शीघ्र पूर्ण कर जल्द कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता और कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा जीत की हैट्रिक बनाएगी। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क अभियान और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई है। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने पर भी मंथन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिन बूथों पर पिछले चुनावों में पार्टी को कम वोट मिले थे, वहां कोर कमेटी के सदस्य प्रवास करेंगे। वे स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन अब पहले से कहीं अधिक सरल और पारदर्शी हो गया है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से पेंशनर अब घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापित कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है। देहरादून की मुख्य कोषाधिकारी नीतू भंडारी ने बताया कि पेंशनरों की सुविधा के लिए कोषागार में पेंशनर फैसिलिटेशन हॉल स्थापित किया गया है, जहां उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों के पेंशनर जो वर्तमान में देहरादून में रह रहे हैं, वे भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल रात झमाझम बारिश हुई। तेज हवाओं और बारिश से तापमान में कमी आई है, जिससे लोगों ने भीषण गर्मी से राहत ली है। मसूरी में कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की खबर है। मौसम विभाग ने आज देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं तेज हवाएं, आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में कुमाऊं मंडल स्तरीय एनसीसी कैडेट्स के लिए 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिलों के एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स को ड्रिल, ड्रोन संचालन, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, राइफल हैंडलिंग और फायरिंग का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। आज इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई कलाकारों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन एक ऐसा सितारा भी हिंदी सिनेमा में हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना। जी हाँ दोस्तों, हमारे आज के इस कार्यक्रम के कलाकार हैं राजकुमार, और वो थे संवाद अदायगी यानी बेहतरीन डायलॉग बोलने के बेताज बादशाह। इनका पूरा नाम कुलभूषण पंडित था, जिन्हें प्यार से सभी राजकुमार के नाम से फिल्म इंडस्ट्रीज में जानते थे। 208 अक्टूबर वर्ष 1926 को पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में जन्मे राजकुमार साहब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता हैं। इनका अभिनय इन्हें एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा गया जिसे आज

आज भी आम जनमानस अपने दिल से उतार नहीं पाता। इनकी बोलने की अदा और देखने की अदा आज भी लोगों के मनों में बसी हुई है। तो आइए आज सुरबहार कार्यक्रम में थोड़ी सी बातचीत इनके बारे में और सुनते हैं इनकी फिल्मों के कुछ प्यारे प्यारे से गीत।

दोस्तों, मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर कुलभूषण पंडित फिल्मों के राजकुमार बने तो उसके पीछे थी उनकी डायलॉग बोलने की खास शैली। आज भी दर्शकों के बीच उनकी संवाद अदायगी और स्टाइल का बोलबाला देखने को मिलता है। जानी ये बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं, और जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ऐसे डायलॉग बोलकर मशहूर अभिनेता राजकुमार ने बेहतरीन अभिनय के साथ साथ दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। अपने साथी सिपाही की इस बात से प्रेरित होकर कि अगर आप फिल्मों में हीरो का रोल निभाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं, राजकुमार साहब ने इन लाइनों को बड़े ही खास तरीके से अपने जीवन में ले लिया और फिल्मों की तरफ रुख कर लिया। वर्ष 1952 में फिल्म

रंगीली से अभिनय की शुरुआत की और फिर 1957 में उन्होंने मदर इंडिया फिल्म में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका के साथ दर्शकों के बीच प्रमुखता हासिल की। और दोस्तों, गीतों का ये फलसफा उनकी फिल्मों का यूं ही चलता रहेगा। अपना रेडियो सेट छोड़कर कहीं ना जाएं और सुनते रहिए कार्यक्रम सुरबहार। आइए आप सुनते हैं उनकी फिल्म नील कमल का गीत।

श्रोताओ, रंगीली उजाला हमराज हीर रांझा मर्यादा लाल पत्थर पाकीजा तिरंगा सौदागर वक्त हिंदुस्तान की कसम मेरे हुजूर दिल एक मंदिर मुकद्दर का फैसला और दिल अपना प्रीत पराई जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय का लोहा मनवा चुके राजकुमार साहब संवाद की विशिष्ट शैली के लिए जाने गए। काजल और वक्त फिल्म की जबरदस्त कामयाबी से राजकुमार साहब शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुँचे। ऐसी स्थिति जब किसी अभिनेता के सामने आ जाती है तो वह मनमानी के दौर पर चल पड़ता है और एक खास इमेज में बंध जाता है, लेकिन राजकुमार साहब कभी किसी इमेज में नहीं बंधे। उन्होंने उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाने वाली फिल्में भी करी और यहाँ भी दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म वक्त का एक गीत।

दोस्तों, सदाबहार फिल्मी गीत एक ही कलाकार में आज आपके साथ बात हो रही है राजकुमार फिल्म अभिनेता के बारे में। दोस्तों, फिल्म जगत में ये बात प्रचलित थी कि राजकुमार साहब बेहद मुंहफट आदमी थे, जो दिल में आता था उसे शब्दों का बाण बनाकर सामने वाले पर दाग देते थे। ये बात सोचते भी नहीं थे कि सामने वाले को इसका बुरा लगेगा या नहीं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें साफ दिल का व्यक्ति मानते थे। मौत और जिंदगी इंसान का निजी मामला होता है, इस बात को मानने वाले राजकुमार साहब चाहते थे अपने जीवन के अंतिम दिनों में उनकी मृत्यु के बाद और अंतिम संस्कार के बाद ही फिल्म जगत को उनकी मृत्यु के बारे में बताया जाए। वर्ष 1991 में आई फिल्म सौदागर उनके जीवन की अंतिम सुपरहिट फिल्म थी। 3 जुलाई 1996 को ये सितारा पंचतत्व में विलीन हो गया और पीछे छोड़ गया अभिनय का बेजोड़ तरीका,

सौदागर फिल्म के इसी गीत के साथ श्रोताओं, अब आज का हमारा सुरबहार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल इसी कार्यक्रम में फिर से एक और कलाकार के जीवन के बारे में आपके साथ बात करेंगे और सुनवाएंगे आपको उनकी फिल्मों के कुछ गीत। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार, FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम के आरंभ में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों का गाया शहीद फिल्म का गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों का गाया परिणीता फिल्म का ये गीत।

परिणीता फिल्म के इस गीत के बाद आइए सैनिक भाइयों आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में परदेसी बाबू फिल्म का गीत।

अभी आप सुन रहे थे जसविंदर नरूला, प्रीति उत्तम, अमय दत्त, निहार और साथियों का गाया पिंजर फिल्म का गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का गीत। रूप कुमार राठौर और साथियों की आवाज़ों में गीत जयदीप सानी का है और इस गीत को संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

रब ने बना दी जोड़ी। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। आइए अब कार्यक्रम के समापन में आप सभी को सुनवाते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में जब वी मीट फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी लोकगीतों का कार्यक्रम।

0: ആകാശവാണി എറ്റ് 90.
1: लोक सुर कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए गढ़वाली लोकगीत कलाकार है रवि गोसाई।

अभी श्रोता सुन रहे थे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजू पांगते का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना हर अभिनय प्रेमी का बहुत बड़ा सपना होता है। लोग इंडस्ट्री में आ तो जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम ही होते हैं जो अपने अभिनय के दम पर अपनी पहचान बना पाते हैं और अपनी बेहतरीन अभिनय के जरिए लोगों के दिलों में राज किया है। जाने माने कलाकार

पंकज कपूर ने। आज खास तौर पर हम पंकज कपूर को याद कर रहे हैं क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। बॉलीवुड में पंकज कपूर का नाम उन खास जाने माने मशहूर कलाकारों में लिया जाता है जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से हर किरदार को यादगार बनाया है, चाहे कॉमेडी हो, इमोशनल रोल हो या फिर सीरियस किरदार। पंकज कपूर ने हमेशा अपनी शानदार अभिनय क्षमता के जरिए दर्शकों के बीच खुद को एक खास जगह दिलाई है।

तो श्रोता, 29 मई 1954 को जन्म हुआ लुधियाना में पंकज कपूर का। स्कूल कॉलेज के दिनों में ही थिएटर का शौक उनमें जागा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की, लेकिन अभिनय का जुनून कुछ इस कदर उन पर हावी था कि उन्होंने अपने पिता को मनवाया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD में दाखिला लेने के लिए। FTII ने उन्हें रिजेक्ट किया और बाद में जब उन्होंने NSD में उन्हें दाखिला मिला तो उन्होंने वहाँ इस शिद्दत से, मेहनत से अपना काम किया कि वो एक बेहतरीन एक्टर के रूप में आज हमारे सामने हैं। फिल्मी दुनिया की बात करें तो पंकज कपूर को जो पहला ब्रेक मिला वो रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी से मिला। इस मूवी में उन्होंने प्यारेलाल नैयर का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म आरोहण और मंडी में काम किया और कुंदन शाह की फिल्म जाने भी दो यारों जैसी फिल्मों में वो नजर आए।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: तो श्रोताओं, फिल्मों में पंकज कपूर की बेहतरीन अभिनय क्षमता की बात ही निराली रही। उनकी जो भी फिल्में आप देखिए, उसमें उन्होंने जो किरदार निभाए हैं वो इतने सशक्त हैं, इतने खास, इतने दमदार हैं, जो हमें अपने करीब ही हम उन्हें पाते हैं। जैसे फिल्मों में उनके खास किरदारों की बात करें तो साल 1989 में राख फिल्म के लिए उन्हें पहला नेशनल अवार्ड मिला। इस फिल्म में उन्होंने इंस्पेक्टर पीके का रोल निभाया था। साल 1991 में एक डॉक्टर की मौत, डॉक्टर दीपांकर रॉय का अभिनय बेहद सराहा गया। और असली कमाल की बात करें तो साल 2003 और 4 के बीच में विशाल भारद्वाज की बेहद कामयाब फिल्म आई मकबूल। शेक्सपियर के मैकबेथ पर आधारित इस फिल्म में उन्होंने जहांगीर खान यानी अब्बाजी का रोल अदा किया था, जो दर्शकों के जहन में जब भी ये फिल्म देखें या पंकज कपूर को देखें तो जहन में तरोताज़ा हो आता है। और इस खास रोल के लिए पंकज कपूर को दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ और कुल 3 राष्ट्रीय पुरस्कार।

श्रोताओं, जानदार शानदार अभिनय की दुनिया में तो बेहद नाम कमाया पंकज कपूर ने। उन्होंने साल 2011 में निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा और 2011 में मौसम फिल्म के जरिए उन्होंने निर्देशन की दुनिया में अपनी पहली फिल्म निर्देशित की, जिसमें शाहिद कपूर जो उनके पुत्र हैं और सोनम कपूर मुख्य भूमिकाओं में नजर आए।

0: अगर आपको शानदार के शानदार गानों के अपडेट्स।
1: तो श्रोताओं, फिल्मी दुनिया में अपने शानदार अभिनय का जलवा तो बिखेरा ही पंकज कपूर ने, इसके अलावा छोटे पर्दे पर यानी टेलीविज़न की दुनिया में भी पंकज कपूर ने खूब नाम कमाया। उन्होंने करमचंद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने और ऑफिस ऑफिस जैसे धारावाहिकों में काम किया और इन शोज़ के ज़रिए वो घर घर में मशहूर हो गए। जिस किरदार को उन्होंने निभाया, खासकर ऑफिस ऑफिस में मुसद्दी लाल का किरदार, आज भी लोगों के जहन में तरोताज़ा है। पंकज कपूर हमेशा एक ऐसे शानदार अभिनेता के रूप में हम देखते हैं उन्हें, जो किरदार के लिए खुद को पूरी तरह बदल सकने का दम रखते हैं।
2: Gets himself a wife, but a daughter is a daughter all

तो श्रोताओं, जाने माने अभिनेता पंकज कपूर के निजी जीवन की बात करें तो ये जिंदगी भी उनकी बेहद दिलचस्प रही है। साल 1979 में जानी मानी मशहूर अदाकारा और नृत्यांगना नीलिमा अजीम से उन्होंने विवाह किया और इस रिश्ते से उनका बेटा शाहिद कपूर का जन्म हुआ और बाद में ये अलग हो गए। और साल 1984 में जब ये दोनों अलग हो गए तो साल 1988 में उन्होंने एक और मशहूर अदाकारा सुप्रिया पाठक से दूसरा विवाह किया। और सुप्रिया पाठक को हम सभी जानते हैं, जानी मानी अभिनेत्री दीना पाठक की वो बेटी हैं और उनके दो बच्चे हैं, बेटा रुहान कपूर और बेटी सनाह कपूर। पंकज कपूर की यूँ तो फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है, उनके अभिनय की जो कई किरदारों को हमने उन फिल्मों में देखा है, जैसे राख, द ब्लू अम्ब्रेला, आरोहण मंडी, एक डॉक्टर की मौत, जाने भी दो यारो, गांधी, आघात, रोज़ा, हल्ला बोल जैसी कई फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अपने शानदार अभिनय का लोहा मनवाया है। और पंकज कपूर की हम बात करें तो वो न सिर्फ एक अभिनेता हैं बल्कि अभिनय की एक बहुत बड़ी संस्था माने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में जो अपने बेहतरीन काम से ये साबित किया है कि अगर प्रतिभा हो, समर्पण हो, सच्ची लगन हो तो पारंपरिक हीरो बने बिना भी सिनेमा पर राज किया जा सकता है।

तो श्रोताओं, जानदार शानदार बेमिसाल अभिनय से सजी जो फिल्में हैं वो तो पंकज कपूर की है ही, और वो अपने आप भी एक शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं। तो पंकज कपूर को एक बार पुनः उनके जन्मदिन की हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारा खूब सारा एंटरटेनमेंट और भी करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का मेरी पसंद कार्यक्रम संपन्न करने की अंजू पांगती को भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। बहनें सुनेंगी घर संसार।

स्वागत करते हैं आप सभी श्रोता बहनों का आज के घर संसार कार्यक्रम में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आधे घंटे के इस खूबसूरत सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी संगीता तिलारा। तो कैसी हैं आप सभी? हम तो हमेशा यही उम्मीद करते हैं और यही दुआएं करते हैं कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराती रहें और इसी मुस्कान के साथ हमेशा सुनती रहें हमारे साथ अपना कार्यक्रम घर संसार। कुछ यादें दिल के संदूक में महफूज रहती हैं, कुछ यादें दिल के संदूक में महफूज रहती हैं, वक्त की धूप में भी सदा ताज़ा रहती हैं। इन्हें संजो कर रखना ही तो ज़िंदगी है, इन्हें संजो कर रखना ही तो ज़िंदगी है, क्योंकि यादें ही हैं जो हमेशा साथ रहती हैं, क्योंकि ये यादें ही हैं जो हमेशा साथ रहती हैं। तो आइए बहनों, आज इसी संदूक को खोलते

और यादों के कुछ सुनहरे पन्ने पलटते हैं। बहनों, वक्त बदला, दौर बदल गई, इनके साथ साथ संचार के कई रंग भी बदल गए, लेकिन इस दौर में भी रेडियो की आवाज़ आज भी दिलों में बसती है। ऑल इंडिया रेडियो ने 90 वर्षों का ये सफ़र केवल प्रसारण का सफ़र के रूप में तय नहीं किया, बल्कि भावनाओं, अपनत्व और यादों की एक खूबसूरत यात्रा की। एक समय था जब घरों में रेडियो की आवाज़ के साथ ही सुबह होती थी, समाचारों पर सबकी नज़रें रहती थी और गीत संगीत पूरे परिवार को एक साथ जोड़ देता था। बहनों, आकाशवाणी ने भी वर्षों से अपने कार्यक्रमों के माध्यम से अपने श्रोताओं के जीवन में एक खास जगह बनाई।

0: खूबसूरत सफ़र में हमने अपने कुछ श्रोताओं से बातचीत की, जिनकी यादों में आज भी आकाशवाणी की मधुर आवाज़ गूंजती है। तो आइए सुनते हैं उनके अनुभव, उनकी भावनाएं और आकाशवाणी से जुड़ी वे सुनहरी यादें जो समय के साथ और भी अनमोल बनती चली गई। तो बहनों, हम आपको आकाशवाणी से जुड़ी सुनहरी यादें विषय पर अपने श्रोताओं के साथ की गई ये क्षेत्र संकलित बातचीत सुनवाते हैं। बहनों, ऑल इंडिया रेडियो अपने 90 वर्षों का सुनहरा सफर पूरा कर चुका है। इन 9 दशकों में आकाशवाणी सिर्फ एक प्रसारण माध्यम नहीं, बल्कि हमारे दिलों की धड़कन, हमारी यादों का हिस्सा, हर घर का साथी रहा है। वो सुबह की खबरें हों, दोपहर के गीत हों या रात की कहानियां, ऑल इंडिया रेडियो की आवाज ने न जाने कितने पलों को खूबसूरत बनाया है। और आज इस खास मौके पर हमारे साथ कुछ श्रोतागण जुड़ रहे हैं, तो आइए उनसे जानते हैं उनके विचार, किस प्रकार से वो आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पहली श्रोता जुड़ रही हैं अल्मोड़ा से,
1: श्रीमती मुन्नी तिलाड़ा जी, जो एक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों तक अपनी सेवाएं देने वाली मुन्नी जी का आकाशवाणी से भी बहुत आत्मनीय और पुराना रिश्ता रहा है। तो आइए सुनते हैं उनकी यादों की वो खूबसूरत दुनिया जो कहीं ना कहीं आकाशवाणी की मधुर आवाजों से जुड़ी है। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार
1: जी। तो मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी रेडियो सुनने की शुरुआत कब से हुई, आकाशवाणी को सुनना आपने कब से शुरू किया?
2: मैंने आकाशवाणी को सुनना लगभग जब मैं 7th या 8th में पढ़ती थी तब से शुरू किया था, क्योंकि उस समय टीवी का चलन नहीं था, एकमात्र रेडियो ही मनोरंजन का साधन था और इसी के द्वारा हम अपना मनोरंजन करते थे और विभिन्न कार्यक्रम सुनते थे।
1: जी मैम, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके समय में रेडियो लोगों की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा हुआ करता था, उस दौर की क्या कोई ऐसी याद है जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती हो?
2: जी हाँ, उस समय जो मनोरंजन का मुख्य साधन ही रेडियो था, तो उस समय रेडियो से हम समाचार सुनते थे। समाचार के साथ साथ हम संगीत का कार्यक्रम, विभिन्न खेलों की कमेंट्री सुनते थे, जिसको सुनने में हमें बहुत मजा आता था। उस समय का एक संस्मरण मुझे याद है कि जब मैं बीए में पढ़ती थी तो बिना रेडियो के मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती थी। मैं जब तक रेडियो नहीं खोलती थी तब तक मुझसे पढ़ा नहीं जाता था। इस बात पर मुझे मेरी माँ जो है बहुत डांटती भी थी, परंतु मेरे पिताजी मेरे सपोर्ट में खड़े रहते थे। मैं रेडियो ऑन कर धीमी आवाज में रख लेती थी और जब मन एकाग्र हो जाता था तो मेरा पढ़ाई में मन लग जाता था और इससे मेरी पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं पड़ता था और मैं बीए में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुई, तो इसका मेरे पढ़ाई में कोई अंतर नहीं पड़ा।
1: जी, जैसे आपने बताया कि आप जब रेडियो लगाती थी, रेडियो सुनती थी, तभी आप पढ़ाई करती थी, तो इतना जुड़ाव आपका रहा है, तो क्या कभी आकाशवाणी के किसी कार्यक्रम, गीत या संदेश ने आपके मन को बहुत गहराई से छुआ हो, आप हमारे संग साझा कर सकती हैं?
2: जी हाँ, ये उस समय जो है रेडियो के विभिन्न कार्यक्रम आते थे, उसमें बिना का गीतमाला एक ऐसा कार्यक्रम था जो मेरे हृदय को छू जाता था। बिना का गीतमाला स्वर्गीय अमीन सयानी जी प्रस्तुत करते थे, उनकी जो है मधुर आवाज और उनका प्रस्तुत करने का ढंग जो था वो हमें बहुत अच्छा लगता था। हम सब बहनें एक साथ मिलकर उस कार्यक्रम को सुनते थे। इसके साथ ही मुझे उस समय के समाचार वाचक देवकी नंदन पांडे जी की गंभीर आवाज भी बहुत प्रेरित करती थी। वो कितनी अच्छी तरह से समाचार का वाचन करते थे, तो बहुत ही अच्छी आवाज थी जिसमें समाचार सुनने में मजा आता था
1: जी।
2: और इसके बाद जब मैं शादी करके अल्मोड़े आई तो उसके बाद भी मैं रेडियो से जुड़ी थी और मैं कार्यक्रम सुनती रहती थी और उसमें मुझे बड़ा आनंद आता था कि रेडियो को हम कहीं भी ले जाकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं, चाहे हम बालकनी में बैठे या कहीं अपने सखियों साथियों के साथ बैठे तो साइड में रेडियो रखकर हम कार्यक्रम को सुन सकते थे। और ये आकाशवाणी अल्मोड़ा, इससे भी मैं जो हूँ बहुत प्रभावित हुई हूँ, क्योंकि इसमें भी मैंने 1-2 कार्यक्रम दिए थे और मुझे अच्छा लगा कि आकाशवाणी अल्मोड़ा अपनी श्रोताओं के मनोरंजन को ध्यान में रखकर विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है
1: जी। और अब जब आप सेवानिवृत्त जीवन जी रही हैं, तो क्या आज भी रेडियो सुनती हैं आप? और तो कुछ पुराने दिन याद आते हैं आपको, उस पल में क्या महसूस होता है आपको?
2: जी हाँ, आज भी जो हूँ मैं रेडियो से जुड़ी हुई हूँ। पहले जो है जिस समय मैं सेवा में थी उस समय इतना समय नहीं मिलता था कि सुबह का कार्यक्रम जो है हम सुन सके, पर अब जब मैं सेवा

0: निवृत्त हो गई हूँ, तो मैं सुबह के भजन और उसमें जो प्रोग्राम आते हैं उनको सुनती हूँ। उसके साथ साथ जो बच्चों के कार्यक्रम है, पुरानी गीतों की जो श्रृंखला है उसे भी मैं सुनती हूँ। पुराने गीत बहुत अच्छे लगते हैं और उनको सुनने में बहुत आनंद आता है। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी अल्मोड़ा बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, इसके अतिरिक्त किसानों के लिए उसके कार्यक्रम है, घर संसार और अपन दो कार्यक्रम महिलाओं के लिए है, इससे महिलाएं जो हैं उससे जुड़ी हुई हैं, और युवा वर्ग के लिए भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर करता रहता है। वैसे तो ये कहा जाता है कि बीती ताही विसार दे आगे की सुध लो, परंतु पुरानी बातों को भुलाना इतना आसान नहीं होता है, उनकी यादें उसको सहेज कर रखना ही अच्छा लगता है। उनमें एक याद जो है हमारी आकाशवाणी है, जिसे हम निरंतर सुनते रहते हैं और इससे हमें बहुत सी उपयोगी ज्ञान मिलता है और इससे जुड़े रहते हैं।
1: जी, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और मेरी कामना है कि इसमें जो प्रसारित हो रहे हैं कार्यक्रम वो निरंतर आगे को बढ़ते रहें और श्रोताओं का मनोरंजन करते रहें, नए नए कार्यक्रम प्रसारित हों और ये दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से आगे को बढ़ता रहे और श्रोता इसके साथ जुड़ते रहें।
1: जी मैम, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपने अपने इतने अनमोल विचार हमारे संग साझा किए, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: मैं भी धन्यवाद करती हूँ और रेडियो से संबंधित अपनी यादों को आप लोगों के साथ साझा कर सकती
1: हूँ। जी बहनों, आकाशवाणी के 90 वर्षों के इस सुनहरे सफर में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ऐसे श्रोताजन जो बहुत ही लंबे समय से हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है। हमारे साथ हैं श्री गौरी दत्त तिवारी जी, जो रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं पशुपालन विभाग से। तिवारी जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में।
2: सुनने वालों को मेरा प्रणाम।
3: जी, आप काफी लंबे समय से हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा केंद्र को सुन रहे हैं, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आकाशवाणी अल्मोड़ा सुनना कब से शुरू किया?
2: लगभग 1970 से प्रारंभ किया था।
3: जी, तो 1970 से आप आकाशवाणी अल्मोड़ा को सुनते आ रहे हैं।
2: जी हाँ।
3: जी, तो सर रेडियो की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद थी?
2: सबसे ज्यादा पसंद तो मुझे सुबह का भक्ति संगीत था
3: जी।
2: उसके बाद समाचार आते थे
3: जी,
2: स्थानीय समाचार मिलते हैं उससे
3: जी,
2: जिनसे अपनी परंपराओं का ज्ञान होता है, सैनिक कार्यक्रम आता है
3: जी,
2: ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते थे। इसके बाद कृषि कार्यक्रम भी आता था
3: जी,
2: वो भी बहुत अच्छा है, वो समस्त उत्तराखंड या पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अच्छा है
3: जी,
2: यही है
3: जी। और आज भी जो आप इतना आकाशवाणी अल्मोड़ा को सुनते हैं आपने बताया, तो ऐसा जुड़ाव क्यों बना हुआ है आपका, क्या खास बात लगती है आपको?
2: रेडियो सुनने से दो काम हो सकते हैं, एक तो हम अपना काम करते रहें, सुनते रहें
3: जी।
2: अब आप टेलीविजन के आगे से बैठ जाएं, हम काम करने के अलावा हमको बैठना पड़ता है, इसलिए हमको रेडियो से के साथ सबसे ज्यादा ये है कि हम अपना कार्य भी करते रहें और रेडियो भी सुनते रहें, दो फायदे हैं
3: जी। और आकाशवाणी से जुड़ी कोई खास याद जो आज भी आपको याद हो आप हमारे संग साझा कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा।
2: हमें पुराने समय में स्वर्गीय देवकी नंदन पांडे जी समाचार सुनाते थे
3: जी,
2: वो आज भी ऐसा लगता है सामने खड़े हो
3: जी। आप इतने लंबे समय से आकाशवाणी अल्मोड़ा केंद्र को सुन रहे हैं, तो 90 वर्ष पूरे होने पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मेरा संदेश संस्थान प्रशासन को ये है कि इसको जारी रखा जाए
3: जी,
2: ये हमारी परंपराओं को, हमारे रीति रिवाजों को सारे उत्तराखंड में फैलाते रहता है
3: जी,
2: यही देना चाहते हैं।
3: और सर आप हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा केंद्र के कार्यक्रम सुनते हैं, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ के कार्यक्रम पसंद आते हैं और आगे भी आएंगे। हम आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं, आप इसी तरह हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा से प्रसारित कार्यक्रम सुनते रहिएगा। और आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
2: आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष के सुनहरे सफर को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे साथ अगली श्रोता जुड़ रही हैं लाला बाजार अल्मोड़ा से संजीदा अंसारी जी, जो आकाशवाणी अल्मोड़ा की नियमित श्रोता है।
4: बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
5: जी शुक्रिया। आप
4: जी संजीदा जी, आप कौन कौन से प्रोग्राम हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा केंद्र से सुनती हैं?
5: मेरी तो शुरुआती रेडियो से होती है सुबह को
4: जी,
5: आपकी फरमाइशी प्रोग्राम से मेरा रेडियो चलता रहता है, अपना काम करते रहते हैं
4: जी,
5: तो बहुत पसंद आता है हमें
4: जी।

0: और जहाँ तक सुनने की बात है, मेरा बचपन इसी से शुरू हुआ है। मेरे घर में सब बहुत शौकीन थे रेडियो की।
1: जी, आप बता रही हैं कि आप बचपन से ही रेडियो सुनती आ रही हैं, तो आपके लिए कितना खास है आकाशवाणी अल्मोड़ा और इससे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम? जब आप सुनती हैं तो क्या किसी जानकारी से आपको लाभ मिला है या किसी तरह से प्रेरित हुई हैं आप?
0: जी, जब घर संसार आता है उसमें बहुत सी रेसिपी ऐसी मिलती है मुझे जो
1: जी
0: मैं बनाती हूँ,
1: जी
0: और बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे डॉक्टर साहब की होती हैं बहुत सी जानकारियाँ महिलाओं को लेकर, खास तौर पे वो भी हमें फायदा पहुँचाती हैं।
1: जी कुछ खास यादें जुड़ी हैं आपकी आकाशवाणी अल्मोड़ा की कुछ?
0: जी, जब रात को आपके अनुरोध पे आया करता था बचपन में,
1: जी
0: रिजवी साहब का प्रोग्राम मैं सुना करती थी, मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ उनकी।
1: जी
0: उनका पेश करना प्रोग्राम का मुझे बड़ा पसंद था।
1: तो इस
0: जी
1: अवसर पर
0: जी
1: आप क्या कहना चाहेंगी?
0: जी हमें बहुत बहुत, आप सबको पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद।
1: संजू जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और हमसे इतनी बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी आपका भी धन्यवाद।
1: तो देखा बहनों आपने, कैसे आकाशवाणी ने पीढ़ियों से हमारे जीवन को छुआ है, हमें जोड़ा है, सूचना और मनोरंजन का एक अटूट हिस्सा बनी रही है। 90 साल का ये सफर सिर्फ प्रसारण का नहीं, बल्कि हमारी साझा यादों, भावनाओं और देश के प्रगति का सफर है। हम आशा करते हैं कि आकाशवाणी अपनी इस गौरवशाली परंपरा को बनाए रखेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसी ही विश्वसनीय और प्यारी आवाज बनी रहेगी। आकाशवाणी के इस अद्भुत सफर को हमारी ओर से हम ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: बहनों, अभी आप आकाशवाणी से जुड़ी सुनहरी यादें विषय पर कुछ श्रोताओं के साथ की गई ये क्षेत्र संकलित बातचीत सुन रही थी, जिसमें हमने अपने श्रोताओं के विचार जाने, जिनकी यादों में आज भी आकाशवाणी की मधुर यादें बसी हैं। बहनों, सच ही कहा गया है कि रेडियो केवल सुनने का माध्यम नहीं है, बल्कि भावनाओं और अपनत्व का एक खूबसूरत रिश्ता है। तो बहनों, अब इसी खूबसूरत एहसास को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत जो हमें याद दिलाता है।
3: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा, चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गरिया।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप सुन रही हैं अपना कार्यक्रम घर संसार। बहनों, आजकल बहुत तेज गर्मी हो रही है। वैसे कल बारिश है तो थोड़ी सी उसमें राहत है, लेकिन मौसम तो गर्मियों का है। और इस मौसम में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो है तेज़ धूप, पसीना और चिपचिपाहट। ऐसे में अगर जो हम कपड़े पहनते हैं उनका चुनाव सही ना हो तो पूरा दिन बेचैनी के साथ बीतता है। कई बार तो बहनों हम सिर्फ फैशन के अनुसार कपड़ों को खरीद लेते हैं, लेकिन वो इस मौसम में नहीं पहने जाते। बहनों, मौसम के अनुसार हमेशा कपड़ों का चुनाव करना अच्छा होता है और ये ज़रूरी भी है। और बात जब गर्मियों की हो तो कॉटन यानी कि सूती फैब्रिक, जो कॉटन के कपड़े हैं, वो सबसे अच्छे होते हैं। और बहनों, आज के फैशन फ्राइडे के सेगमेंट में हम बात करेंगे गर्मी में कॉटन कपड़ों का सही चुनाव हम किस प्रकार से करें। बहनों, गर्मी से बचना है, एलर्जी चिपचिपाहट से दूर रहना है तो इस समय कॉटन के फैब्रिक ही पहने, क्योंकि कॉटन फैब्रिक हमारी त्वचा को सांस लेने में मदद करते हैं। ये पसीना जल्दी सोख लेते हैं, जिसे शरीर ठंडा और आरामदायक महसूस करता है। खास बात तो ये है बहनों कि कॉटन पहनने से घमौरियाँ, खुजली और स्किन एलर्जी जैसी समस्याएँ भी कम होती हैं। अब सवाल ये भी आता है कि गर्मियों में सही कॉटन कपड़ों का चुनाव कैसे करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मौसम में रंगों की। बहनों, जब भी आप कपड़े ले रही हों तो हल्के रंगों का ही चुनाव करें, जैसे सफ़ेद। अगर आप सफ़ेद नहीं पहनती हैं तो क्रीमी सा ले सकती हैं, पिंक ले सकती हैं, आसमानी, हल्का पीला, यानी कि जो भी आप कलर पसंद करती हैं। तो इस वक्त हल्के रंगों का फैब्रिक पसंद करें और ये अच्छे भी होते हैं। और जब हम इन्हें पहनते हैं बहनों तो ये काफ़ी सुकून भरे भी होते हैं, क्योंकि जो गहरे रंग हैं वो धूप को ज़्यादा सोखते हैं, ज़्यादा गर्मी का एहसास दिलाते हैं, जबकि हल्के रंग आँखों और शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। बहनों, इस गर्मी में

बहुत टाइट कपड़ों के बजाय हल्के और ढीले कपड़े पहने। जो ढीले कॉटन कुर्ते हैं, जैसे प्लाजो है, साड़ियों को अगर आप पसंद करती हैं, साड़ियों के अगर आप शौकीन हैं, तो कॉटन की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। इस मौसम में कॉटन की लॉन्ग ड्रेसेस भी आराम देती और बेहद खूबसूरत भी लगती हैं। अब बात करते हैं इन्हें खरीदते समय किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। मैनू कपड़े खरीदते समय सिर्फ कॉटन लिखा देखकर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि जो भी आप ले रही हों प्योर कॉटन के हों, यानी कि शुद्ध सूती हों, क्योंकि कई बार उसमें सिंथेटिक मिक्स होता है जिसमें गर्मी ज़्यादा लगती है। और इसके साथ ही बहनों, एक छोटी सी लेकिन काम की हम बात करेंगे। आजकल बहुत भारी कढ़ाई या मोटे फैब्रिक को पहनने से बचें। मुलायम और हवादार, जो हवा को आर पार करें, ऐसे कपड़े अच्छे होते हैं। जब भी बाहर निकलती हैं धूप में, तो कॉटन का दुपट्टा या स्टॉल हमेशा साथ में रखें, जिसे आप चेहरे और सिर को ढक सकती हैं, जो तेज़ धूप से बचाव करता है। मैनो फैशन वही अच्छा होता है जिसमें आराम भी हो और आत्मविश्वास भी। तो इस गर्मी अपने फैशन में शामिल कीजिए कॉटन का साथ और ख़रीदिए। और आप जब भी इसे ख़रीदती हैं तो ध्यान भी रखिए और अपने को आप ठंडा और आरामदायक और खूबसूरत बना सकती हैं, क्योंकि जब भी हम सहज महसूस करते हैं तभी हमारी मुस्कान और व्यक्तित्व सबसे खूबसूरत लगते हैं। और हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी बहनें हमेशा आकर्षक और खूबसूरत दिखें। तो बहनों, अपनी इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और अब कार्यक्रम में आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

बिनो इसी गीत के साथ समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। बिनो घर संसार कार्यक्रम के अगले अंक में फिर होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस समय अपने रेडियो सखी संगीता तिलारा को दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक

0: ने कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। दून विश्वविद्यालय में ब्रिक्स अकादमिक मिड टर्म सम्मेलन में ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों के बीच महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया। चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार ऋषिकुल में ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू। और बागेश्वर में मानवाधिकार संरक्षण व सुशासन के संवेदनीकरण पर परिवादों की सुनवाई व जागरूकता कार्यक्रम जारी। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफिक चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। यह हाई पावर कमेटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी। दून विश्वविद्यालय में आज ब्रिक्स अकादमिक मिड टर्म सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भारत सहित ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों के शिक्षाविद, नीति विशेषज्ञ, शोधकर्ताओं के साथ ही विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने वैश्विक चुनौतियों और सतत विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया।

0: विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव व ब्रिक्स शेरपा शंभू एस हक्की ने ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को समय की आवश्यकता बताया। सम्मेलन के दौरान खंडित वैश्विक अर्थव्यवस्था में हरित औद्योगिक परिवर्तन, जैव विविधता व स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों का संरक्षण और हरित परिवर्तन के लिए जलवायु वित्त का विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 3 तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। सत्र में विभिन्न देशों से आए विशेषज्ञों ने हरित विकास, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, वित्तीय सहयोग और सतत विकास के मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच ज्ञान, तकनीक, वित्त और नीति स्तर पर सहयोग को बढ़ाकर वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी समाधान निकाला जा सकता है।
1: इतनी महत्वपूर्ण इवेंट उत्तराखंड में है, ये तो हमारा सौभाग्य है और हम ORF और RIS को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये इवेंट यहाँ पर उत्तराखंड में और दून यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज किया है। डेफिनेटली इस कॉन्फ्रेंस के डेलिब्रेशन से जो भी टेकअवेज और डुएबल्स निकलेंगे वो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के लिए एक एक्शन प्लान बनेगा और उसको डेफिनेटली पूरी ह्यूमैनिटी को इसका लाभ प्राप्त होगा।
0: सम्मेलन में दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि दून विश्वविद्यालय के लिए ये आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2: मुझे लगता है कि आज की ये डिमांड है कि हम क्लासरूम टीचिंग से बाहर निकलकर, लैब से बाहर निकलकर कम्युनिटीज़ के बारे में सोचें और जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है वो आज की नीड है, कोलैबोरेशन आज की नीड है। तो ब्रिक्स की ओर से जब ये प्रपोजल आया कि उनको स्टेट में कुछ कराना है एंड दे कॉन्टेक्टेड अस, ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने जिन भी लोगों से बात की उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप दून यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करिए, वो इस इवेंट को करा सकते हैं। और ये इवेंट दून यूनिवर्सिटी में हुआ जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सारे रिसर्च स्कॉलर्स, हमने सारे VCs को कहा कि अपने रिसर्च स्कॉलर्स को नॉमिनेट करिए, तो अक्रॉस द स्टेट के रिसर्च स्कॉलर्स और फैकल्टी मेंबर्स और वाइस चांसलर्स यहाँ आए हैं। निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा।
0: पौड़ी जिले में राशन कार्ड सत्यापन अभियान जारी है। खाद्य आपूर्ति विभाग सत्यापन में अपात्र पाए जा रहे लाभार्थियों के राशन कार्ड निरस्त कर रहा है। इसका उद्देश्य वास्तविक व पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। अभियान के तहत नवीन सर्वे के दौरान अब तक कुल 7,000 से अधिक राशन कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं और इन राशन कार्डों में दर्ज 28,087 यूनिट हटा दी गई है। जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि फरवरी 2026 तक संचालित अभियान में कुल 6,151 राशन कार्ड निरस्त किए गए थे जिनमें 23,337 यूनिट शामिल थी। उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल से चल रहे नवीन सर्वे में भी बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पर्यटन विभाग ने हरिद्वार ऋषिकुल में ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू की है। हरिद्वार के जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल ने बताया कि पंजीकरण केंद्रों में अब तक 3,05,200 से अधिक तीर्थयात्री पंजीकरण करवा चुके हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण केंद्र में यात्रियों की सुविधा के लिए 20 पंजीकरण काउंटर बनाए गए हैं जिसमें विदेशी यात्रियों व बुजुर्ग यात्रियों के लिए अलग पंजीकरण काउंटर बनाया गया है। इसके साथ ही महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग पंजीकरण काउंटर बनाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पंजीकरण केंद्र में स्वास्थ्य परीक्षण स्टॉल के साथ ही CCTV कैमरे व पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर किया जा रहा है। कतर से चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालु निखिल देसाई ने पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की।
4: मैं दोहा कतर में काम करता हूं। पिछले महीने का मेरा बुकिंग था वो मिसाइल वॉर की चक्कर में फ्लाइट कैंसिल हो गई। फिर मैं एक महीने बाद मुझे मौका मिला आने का। यहां पे चारों धाम किए। इट वाज हेवीली क्राउडेड बट वेरी वेल मैनेज्ड, वेरी वेल कंट्रोल्ड बाय द पुलिस एंड ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन।
0: बागेश्वर में उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से मानवाधिकार

0: संरक्षण एवं सुशासन के संवेदनीकरण पर परिवादों की सुनवाई व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य मानव अधिकार, कानून सहायता, नशा उन्मूलन, बुजुर्ग अधिकार और सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करना है। पहले दिन करीब 120 समस्याएं दर्ज हुई और 10 समस्याओं का निस्तारण किया गया। जागरूकता सत्र में रिटेनर अधिवक्ता त्रिलोक चंद्र जोशी ने निशुल्क कानूनी सहायता नालसा हेल्पलाइन 15100 और बुजुर्गों के अधिकारों की जानकारी दी। इसके अलावा अन्य विधिक जानकारियां भी दी गई। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरधर सिंह धर्मशक्तु ने कहा कि मानवाधिकार केवल कानूनी विषय नहीं बल्कि हर व्यक्ति के सम्मान और गरिमामय जीवन से जुड़ा विषय है।
1: आयोग का जो काम केवल शिकायतों की जांच करना ही नहीं है बल्कि मानवाधिकार के बारे में जन जन में इसको जागरूकता करना भी है। इससे पहले हमने चमोली जनपद पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा पौड़ी में इस तरह की कार्यशाला आयोजित की थी और उसी के में हमने बागेश्वर को भी इसको इसमें लिया कि यहाँ पर भी इसकी बहुत जरूरत है।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में जनता और कार्यकर्ताओं की मेहनत से तीसरी बार जीत दर्ज करेंगी। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क अभियान और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने पर भी मंथन हुआ। बैठक में संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास को नई गति देने के संकल्प को और मजबूत बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिन बूथों पर पिछले चुनावों में पार्टी को कम वोट मिले थे वहां कोर कमेटी के सदस्य प्रवास करेंगे। वे स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: मिड टर्म सम्मेलन में ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों के बीच महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। दून विश्वविद्यालय में ब्रिक्स अकादमिक मिड टर्म सम्मेलन में ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों के बीच महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार ऋषिकुल में ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू और बागेश्वर में मानवाधिकार संरक्षण व सुशासन के संवेदनीकरण पर परिवादों की सुनवाई व जागरूकता कार्यक्रम जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है सुगम संगीत। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ऐसे ही बेहतरीन खास शेरो शायरियों से, अपने खास अल्फाजों से, अंदाजों से उर्दू के मशहूर शायर ने ना जाने कितने दिलों को छुआ है। लंबी बीमारी के साथ कल 28 मई को वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र 14 वर्षों से डिमेंशिया से पीड़ित थे और कल उन्होंने इस दुनिया में आखिरी सांस ली। भाषा पर उनकी गहरी पकड़, खास तौर पर गजलों की दुनिया में उनको महारत हासिल थी। उर्दू शायरी की दुनिया में वो एक जाने माने शायर के रूप में जाने जाते हैं। फारसी, हिंदी और अंग्रेज़ी के भी वो

विद्वान थे। 15 फरवरी 1935 को अयोध्या में जन्म हुआ। बशीर बद्र साहब का उनका असल नाम सैयद मोहम्मद बशीर था। अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आगाज उन्हीं की गजल के साथ करते हैं, आवाज जगजीत सिंह की। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में।

0: जारी।
1: तो श्रोताओं, बशीर बद्र साहब मोहब्बत के शायर माने जाते हैं। उनकी शायरी का एक एक लफ्ज इस बात का गवाह है। मोहब्बत का हर रंग उनकी गजलों में मौजूद रहा है, दिखाई देने वाले रंगों में भी और ना दिखाई देने वाले रंगों में भी। पक्के तौर पर उनका पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। कुदरत का पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, धूप का हर टुकड़ा, छाया की हर फांक उनकी मोहब्बत की रंगतें बिखेरती हैं। उनकी इन रंगतों में आशिकी की बेपनाह खूबसूरत तसव्वुरात हैं। खुशबू की तरह महकते हुए, तितलियों की तरह चहकते हुए, बादलों की तरह घिरे हुए, फसलों की तरह लहकते हुए हर अंदाज नजर आते हैं। मैं घर से जब चला तो किवाड़ों की ओट में, मैं घर से जब चला तो किवाड़ों की ओट में नरगिस के फूल चांद की बाहों में छुप गए। इसे खूबसूरत शेर के साथ बशीर बद्र का ही यह खूबसूरत शेर है। अगला कलाम भी उन्हीं का, आवाज़ तलत अजीज़ की।

कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जी हाँ, बशीर बद्र जैसे महान शायर से हम रोज़ ही मुलाकात करते रहेंगे, क्योंकि

उनकी शायरी का, उनके लेखन का, जो इतना बड़ा ख़जाना हमारे साथ है, हमारे पास है, उन्हें पढ़ पढ़ कर हम हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे।

राहों में कौन आया गया कुछ पता नहीं, उसको तलाश करते रहे जो मिला नहीं। बशीर बद्र साहब का ये शेर अभी आपने सुना इस खूबसूरत गज़ल के साथ, आवाज़ तलत अज़ीज़ की, सुगम संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग, जिला शिमला।

0: हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
1: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
0: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
1: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
0: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
1: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
0: जी, ये बात तो है।
1: श्रोताओं,

0: संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
1: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
0: जी, ये बात तो है।
1: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: जी हाँ, और जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
1: जी,
0: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
1: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
0: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
1: जी,
0: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
1: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
0: काले गुलाब?
1: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
0: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
1: जी,
0: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
1: जी,
0: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
1: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
0: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
1: जी,
0: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
1: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
0: जी, वो तो है।
1: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
1: जी,
0: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
0: आइए बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
1: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का।
0: जी,
1: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
0: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
1: जी,
0: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
1: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे

0: आँख मिचौनी खेले,
1: भुट्टे आँख मिचौनी खेले,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर

0: सोहम, वान्या और मनन। गायन स्वर एंजल और वान्या। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे की जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त कर

0: चाहता हूं। वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
1: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
0: बेस्ट ऑफ लक।
2: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें एक कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
3: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
2: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
4: हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
5: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह नंबर 1 और यह नंबर 2।
5: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ, शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज

0: पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालुबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
1: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
0: आक्रमण हुआ
1: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
2: जय महाकाली!
1: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
3: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
1: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के 2 बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो 3rd बंकर की ओर बढ़ने लगे।
0: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
1: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और 3rd बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
0: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के 4th बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो 4th बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
1: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थी। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
4: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
1: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार

0: कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
1: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजे हैं और इस समय श्रोताओं के लिए हम लेकर आते हैं उत्तराखंड के लोकगीत। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं कुमाऊनी लोकगीत के साथ। कलाकार हैं रमेश जोशी।
6: डंग बाजो डंगरा बाजो कुल देश बुनिया को। डंग बाजो डंगरा बाजो कुल देश बुनिया।

पाय में पायली अछो कोण देसे दुनिया को बजो डंगरा बजो कोण देसे दुनिया को डंग बजो डंगरा बजो हीरा भली बाना कि पाय में

0: हीरा सिंह राणा के गाये से कुमाऊनी लोकगीत के साथ उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को

0: ने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
2: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहाँ नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसद

0: संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ

0: के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है धान की फसल का हानिकारक कीटों से बचाव। जानकारी दे रहे हैं श्री JP गुप्ता।
2: किसान भाइयों, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली धान्य फसलों में धान का प्रमुख स्थान है। धान की फसल यहाँ सिंचित एवं असिंचित दोनों अवस्थाओं में उगाई जाती है। यहाँ की भिन्न जलवायु परिस्थितियाँ एवं वर्षा के असमान वितरण के कारण उपज को प्रभावित करने वाले कारकों में कीट पतंगों का प्रमुख स्थान है। इनके द्वारा फसल को 25-30% तक नुकसान पहुँचाई जाती है। धान के फसल में कई प्रकार के कीटों का आक्रमण देखने को होता है। इन कीट पतंगों में सबसे प्रमुख कीट कुरमुला है। यह कीट स्वभाव में बहुभक्षी तथा इस क्षेत्र में बोई जाने वाली सभी फसलों पर इसका प्रकोप होता है। अलग अलग क्षेत्रों में कुरमुले को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे लोहार कीट, गुबरिया कीड़ा, सफ़ेद गिडार, उकसा एवं गुबरेला इत्यादि। इस कीट का प्रौढ़ मुख्यतः सेब, खुमानी, अखरोट, नाशपाती, आड़ू, बाज, तून, खड़ी, गुलाब एवं गुड़हल आदि की पत्तियों को खाकर क्षति पहुंचाते हैं। और इनके अंडों से कुरमुला निकलकर धान के अलावा मंडुआ, मादिरा, मूंग, उड़द, मिर्च, टमाटर, बैंगन आदि फसलों के जड़ों को काटकर खा जाते हैं। प्रभावित धान की फसल जगह जगह सूख जाता है तथा उखाड़ने पर बड़ी आसानी से हाथ में आ जाता है। इस कीट के प्रबंधन के लिए मई के महीने में प्रति जमीन की गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे कुरमुले ऊपर आ जाते हैं और परभक्षियों द्वारा खा लिया जाता है, एवं अच्छी प्रकार सड़ी हुई गोबर की खाद का ही प्रयोग करना चाहिए। वयस्क गुबरेले के विनाश के लिए BL कुरमुला प्रकाश प्रपंच 1 को शाम के समय जलाकर आकर्षित गुबरेले को नष्ट कर देना चाहिए। जैविक नियंत्रण के लिए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित WGPS B2 पाउडर की 200 ग्राम मात्रा प्रति नाली की दर से 10 किलोग्राम सड़ी गोबर के खाद में मिलाकर मई माह के अंतिम जुताई के समय प्रयोग करना प्रभावी होता है। रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपारिफास 10G नामक दानेदार कीटनाशी का 400 ग्राम मात्रा अथवा क्लोरपारिफास 20EC नामक कीटनाशी का 80 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी मिट्टी में मिलाकर नमीयुक्त खेत में बुरकाव करना चाहिए। इसी क्रम में दूसरा प्रमुख कीट तनावेदक कीट है। यह कीट स्वभाव में बहुभक्षी होता है और पूरे उत्तराखंड

पाया जाता है। धान के फसल को इस कीट की सुंडी द्वारा क्षति पहुंचाई जाती है जो गुलाबी रंग की होती है। इस गुलाबी तनावेदक कीट के कारण ग्राह्य किस्मों में केंद्रीय प्ररोह मर जाता है और बालियां सफ़ेद दिखाई देती हैं, जिसे मृत गोभ भी कहते हैं। प्रभावित बालियों में दाने नहीं बनते, ये बालियां खड़ी फसल में दूर से नजर आ जाती है और इन्हें खींचने पर बड़ी आसानी से तने से अलग हो जाती है। यह कीट पूरी फसल के दौरान रहता है, परंतु इसका प्रकोप सितंबर माह में अपने चरम पर होता है। इस कीट के प्रबंधन के लिए जैविक नियंत्रण हेतु अंड परजीवी ट्राइकोकार्ड ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम प्रजाति के 1000 अंडे प्रति नाली की दर से रोपाई करने के 20 से 30 दिन बाद 15 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार खेतों में छोड़ना चाहिए एवं प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करके व्यस्क पतंगों को आकर्षित कर मार देना चाहिए तथा रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी नामक कीटनाशी का

0: से अलग हो जाती है। यह कीट पूरी फसल के दौरान रहता है, परंतु इसका प्रकोप सितंबर माह में अपने चरम पर होता है। इस कीट के प्रबंधन के लिए जैविक नियंत्रण हेतु अंड परजीवी ट्राइकोकार्ड ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम प्रजाति के 1000 अंडे प्रति नाली की दर से रोपाई करने के 20 से 30 दिन बाद 15 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार खेतों में छोड़ना चाहिए एवं प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करके व्यस्क पतंगों को आकर्षित कर मार देना चाहिए तथा रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफास 20 ईसी नामक कीटनाशी का 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करके इस कीट को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा प्रमुख कीट पत्ती लपेटक कीट है। धान की फसल में इस कीट का प्रकोप भी अधिक मात्रा में होता है। यह कीट कल्ले निकलने से लेकर दाने बनने तक पौधों को प्रभावित करता है। इस कीट की हरे रंग की सुंडियाँ पत्तियों को लपेटकर उसके अंदर ही उत्तकों को खा जाती है और उत्पादन में भारी कमी आ जाता है। इसके नियंत्रण के लिए प्रभावित पत्तियों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए, जिससे पत्तियों में उपस्थित सुंडी भी नष्ट हो जाती है। एवं रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरपाइरिफास 20 ईसी नामक कीटनाशी की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त विगत 4-5 वर्षों से पर्वतीय क्षेत्रों के घाटियों में तथा धान की सिंचित अवस्थाओं में भूरा फुदका नामक कीट का आक्रमण देखने को मिल रहा है। यह कीट आकार में छोटा तथा भूरे रंग का फुदकने वाला कीट होता है। यह पौधों के निचले तने से रस चूसकर पौधे को कमज़ोर कर देता है और पौधे झुलसे हुए दिखाई देते हैं। कीट का तीव्र प्रकोप होने पर खेत में अलग अलग जगहों पर गोलाकार झुलसा हुआ पैच दिखाई देता है। यह कीट वायरस का वाहक भी होता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए धान की बुआई समय से करनी चाहिए अथवा फुदका प्रतिरोधी प्रजाति BL87 का बुआई करना चाहिए। नत्रजन का संतुलित मात्रा का उपयोग करना चाहिए एवं रासायनिक नियंत्रण हेतु थायोमिथाग्जाम 25WG की 0.3 ग्राम या इमिडाक्लोपिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल कर छिड़काव करने से इस कीट को नियंत्रित किया जा सकता है। धान की फसल में टिड्डा नामक कीट का प्रकोप भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। ये हरे और भूरे रंग के फुदकने वाले कीट होते हैं। इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों ही धान के फसल में प्रारंभिक अवस्था से लेकर फसल कटने तक पत्तियों को खाकर क्षति पहुंचाते हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित हो जाता है। इसके नियंत्रण हेतु गर्मी में गहरी जुताई करने से इनके अंडे सूर्य के प्रकाश से नष्ट हो जाते हैं और ज़्यादा प्रकोप होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए मेलाथियान 5% धूल का 400 ग्राम मात्रा प्रति नाली की दर से बुरकाव करना चाहिए अथवा डेल्टा मेथ्रीन 1.8 EC नामक कीटनाशी की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करना चाहिए। धान की फसल में बालियों के निर्माण के समय दुधिया अवस्था में एक कीट का आक्रमण होता है, जिसको गंधीवक के नाम से जाना जाता है। इस कीट से विशेष प्रकार का दुर्गंध निकलता है, इसलिए इस कीट को गंधीवक कहते हैं। इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों ही बालियों से दुग्धावस्था में रस को चूसते हैं, जिससे बालियों में दाने का निर्माण नहीं होता है। फलतः बालियां सफ़ेद दिखाई देती हैं, जिससे उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए बालियों के निर्माण के समय मेलाथियान 5% धूल का 500 ग्राम मात्रा प्रति नाली की दर से खेत में सुबह के समय बुरकाव करनी चाहिए। इसके अलावा आप प्रभावित बालियों को निकाल करके गड्ढे में दबा भी सकते हैं। अतः किसान भाइयों, हमें पूर्ण आशा है कि आप इसमें सुझाए गए कीट प्रबंधन को अपनाकर धान की फसल में लगने वाले कीटों का सही नियंत्रण कर पाएंगे। कीटनाशकों का प्रयोग तभी करें जब अन्य उपाय कीटों को नियंत्रित न कर पाएं।
1: धान की फसल का हानिकारक कीटों से बचाव इस विषय पर श्री JP गुप्ता से खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानकारी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: एफ एम 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:40 हुए हैं और इस समय हम श्रोताओं को सुनवाते हैं हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार शाम 7:30 पर, ये दोनों ही समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। शाम 5:05 पर शैल स्वर कार्यक्रम में श्रोता सुनते हैं कुमाऊनी लोकगीत, आज गायिका होंगी विमला रावत। संध्या 5:15 का समय रहेगा युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवावाणी का, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। सिने जगत से आज का इतिहास भी युवा साथी सुन सकेंगे। संध्या 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स। इसी कार्यक्रम में चर्चा सुनिएगा मिशन लाइफ, कैसे करें कचरा कम। संध्या 6:41 पर प्रतिदिन आप सुनते हैं भक्ति संगीत, आज सुनिएगा हरिओम शरण और रामशंकर के गाए भक्ति वंदन। संध्या 7:00 ग्राम जगत कार्यक्रम श्रोताओं के लिए हम लेकर आएंगे, जिसमें आज की बातें होंगी प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना पर, चर्चा सुनिएगा समन्वित मत्स्य पालन से लाभ विषय पर। फिल्म संगीत का लुत्फ आप उठा सकते हैं शाम 7:40 पर। रात 9:15 पर इंद्रधनुष में, रात 10:30 पर और रात 9:30 पर श्रोता फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आपके अनुरोध पर सुन सकेंगे। सुगम संगीत सुनिएगा रात 8:00 सबरस में और रात 10:00 भी आप सुगम संगीत का आनंद ले सकते हैं। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

0: Akashvani at 90.
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। ये सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। श्रोताओं, हिंदी फिल्म और रंगमंच की दुनिया के अभिनय का जब भी जिक्र होता है तो इतिहास पुरुष याद आते हैं, पृथ्वीराज कपूर, जिन्होंने बंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की और भारतीय सिनेमा जगत के युग पुरुष पृथ्वीराज कपूर का नाम एक ऐसे अभिनेता के रूप में हम याद करते हैं जिन्होंने अपनी कड़क आवाज़, रोबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के जरिए लगभग 4 दशकों तक सिने दर्शकों के दिलों पर राज किया। और आज एक ही फनकार में फनकार हैं पृथ्वीराज कपूर। श्रोताओं, आज है 29 मई उनकी पुण्यतिथि, तो उन्हें श्रद्धा नमन करते हुए उन्हीं की अभिनीत फिल्मों के चंद नगमों से ये कार्यक्रम हम सजाते संवारते हैं।

तो श्रोताओं, पृथ्वीराज कपूर जी का जन्म 3 नवंबर 1906 को पंजाब, जो कि तब पाकिस्तान का क्षेत्र था, वहाँ हुआ। पृथ्वीराज जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लायलपुर और लाहौर पाकिस्तान में रहकर पूरी की, जो अब पाकिस्तान है। लाहौर में उन्होंने पढ़ाई की। पृथ्वीराज के पिता दीवान बशेश्वरनाथ के कपूर पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत थे। बाद में उनके पिता का तबादला पेशावर हो गया और पृथ्वीराज जी ने अपनी आगे की पढ़ाई पेशावर के एडवर्ड कॉलेज से की। साथ ही उन्होंने एक वर्ष तक कानून की पढ़ाई भी की, लेकिन बीच में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उस समय तक उनका रुझान थिएटर की ओर हो गया। पृथ्वीराज कपूर जी का मात्र 18 वर्ष की आयु में विवाह हुआ और 1928 में अपनी चाची से आर्थिक सहायता लेकर पृथ्वीराज कपूर जी अपने सपनों के शहर मुंबई अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहुंच गए।

पृथ्वीराज कपूर जी के फिल्मी सफ़र की बात करें तो 1928 में मुंबई में इम्पीरियल फिल्म कंपनी से आप जुड़े और 1930 में बीपी मिश्रा की फिल्म सिनेमा गर्ल से उन्होंने अभिनय की शुरुआत की। इसके कुछ समय पश्चात एंडरसन की थिएटर कंपनी के नाटक शेक्सपियर में भी उन्होंने अभिनय किया। लगभग 2 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में वो संघर्ष करते रहे और बाद में पृथ्वीराज जी को वर्ष 1931 में प्रदर्शित फिल्म आलम आरा में सहायक अभिनेता के रूप में काम करने का अवसर मिला। साल 1933 में कोलकाता के मशहूर न्यू थिएटर के साथ आप जुड़े। 1933 में फिल्म राज रानी और वर्ष 1934 में देवकी बोस की फिल्म सीता की कामयाबी के बाद बतौर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। इसके बाद पृथ्वीराज कपूर जी ने न्यू थिएटर की निर्मित कई फिल्मों में अभिनय किया। इन फिल्मों में मंजिल 1936, 1937 में प्रेसिडेंट जैसी फिल्में शामिल हैं। 1937 में प्रदर्शित फिल्म विद्यापति में पृथ्वीराज कपूर जी के अभिनय को दर्शकों ने बहुत सराहा। साल 1938 में चंदूलाल शाह के रंजीत मूवी टोन के लिए पृथ्वीराज जी अनुबंधित किए गए और इसी बैनर के तले 1940 में प्रदर्शित फिल्म पागल में आपने अपने सिने करियर में पहली बार एंटी हीरो की भूमिका निभाई। और इसके बाद 1941 में सिकंदर आजम फिल्म की अपार सफलता के बाद पृथ्वीराज कपूर कामयाबी की शिखर पर जा पहुँचे। इसी दौरान मुगले आजम, हरिश्चंद तारामती, सिकंदर आजम, आसमान महल जैसी कई उनकी सफल फिल्में प्रदर्शित हुईं, लेकिन 1960 में प्रदर्शित के आसिफ की फिल्म मुगले आजम में उनके सामने अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे। इसके बावजूद पृथ्वीराज कपूर अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहे और ये फिल्म, जब भी इस फिल्म का जिक्र होता है तो अकबर के किरदार के रूप में हम हमेशा याद करते हैं पृथ्वीराज कपूर जी को।

अपने बेटे जाने माने कलाकार राज कपूर की फिल्म आवारा में भी पृथ्वीराज कपूर नज़र आए थे। इसके अलावा कल, आज और कल इस फिल्म में कपूर परिवार की तीन पीढ़ियों ने अभिनय किया था, जिनमें वो खुद थे, राज कपूर थे और रणधीर कपूर थे। और ख्वाजा अहमद अब्बास की आसमान महल भी एक फिल्म थी जिसमें वो नज़र आए थे। तो श्रोताओं, फिल्मों में अपने अभिनय से सम्मोहित करने वाली और रंगमंच को नई दिशा देने वाली ये महान कलाकार 29 मई 1972 को इस दुनिया को रुखसत कह गए और मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक फनकार, और आज के फनकार थे जाने माने अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीत।

सदाबहार फिल्म गीत के सभी श्रोताओं को अंजुबान थे का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत सभी श्रोताओं का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, किसी भी बॉलीवुड फिल्म को बेहतरीन बनाने में सशक्त अभिनय, कहानी, इन सभी की ज़रूरत तो पड़ती ही है, लेकिन उस फिल्म को बेहतरीन बनाते हैं उस फिल्म के जो भी गीत और संगीत हैं, क्योंकि गीतों से ही उस फिल्म को हम ख़ास तौर पर जानते हैं। और हमारे बॉलीवुड की दुनिया में एक से बढ़कर एक गीतकार हुए हैं जिन्होंने अपने बेशकीमती अल्फाजों से जो गीत सजाए हैं वो सदाबहार बन गए हैं। उन्हीं महान गीतकारों में से एक नाम शामिल है, योगेश का। योगेश जी को आज हम ख़ास तौर पर याद कर रहे हैं, आज उनकी भी पुण्यतिथि है, तो उन्हें नमन करते हुए योगेश जी के खूबसूरत गानों से हम आज का सदाबहार फिल्मी गीतों का सफ़र तय करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं।

0: श्रोताओं, 19 मार्च 1973 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्म हुआ जाने माने गीतकार योगेश गौड़ का। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में जाने माने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के साथ उन्होंने अपनी फिल्मी दुनिया की शुरुआत की। जब वो 16 साल के थे तभी वो बॉम्बे चले गए और अपने चचेरे भाई योगेंद्र गौड़ से उन्होंने मदद मांगी, जो कि पठ कथा लेखक थे। पहली बार 1962 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म सखी रॉबिन के लिखे, इस फिल्म के लिए उन्होंने 6 गीत लिखे जिसमें तुम जो आ गए गीत भी शामिल था और इस गीत को मन्ना डे साहब ने गाया था। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर के शुरुआत में ही एक से बढ़कर एक गीतों को रचा।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

तो श्रोताओं, सुप्रसिद्ध संगीत निर्देशक सलिल चौधरी अपनी बेहद मशहूर फिल्म आनंद, जो कि 1971 में प्रदर्शित हुई, इस फिल्म पर काम कर रहे थे तो उन्हें तलाश थी एक सुलझे हुए गीतकार की, और ये तलाश उनकी पूरी हुई योगेश जी के साथ। आनंद की सफलता से योगेश जी देश भर में विख्यात हो गए और सलिल चौधरी के साथ अपने करियर की सफलतम यात्रा पर निकल पड़े। सलिल दा और योगेश जी ने आनंद फिल्म के अलावा अनोखा दान, अन्नदाता, आनंद महल, रजनीगंधा और मीनू जैसी कई फिल्मों में साथ साथ काम किया।

योगेश जी ने अपने संगीतों के करियर में कई जाने माने संगीतकारों के साथ काम किया और संगीतकार घरानों के पिता पुत्र संगीतकारों के साथ काम करने का भी अवसर उन्हें मिला। इस परंपरा में सलिल और संजय चौधरी और सचिन देव एवं राहुल देव बर्मन के लिए भी उन्होंने गीत लिखे। जाने माने संगीतकार सचिन देव बर्मन की उस पार और मिली योगेश के यादगार कार्यों में से उनके एक है और इन फिल्मों का जीवंत गीत संगीत इस साथ की सुनहरी याद भी है। और मिली फिल्म पूरी भी ना हुई थी कि सचिन देव बर्मन बीमार पड़ गए और पिता की आधी फिल्म को राहुल देव बर्मन ने पूरा किया और इस फिल्म के गाने भी बहुत सुरीली हैं और गीत के अल्फाजों का तो फिर कहना ही क्या।

सलिल चौधरी जो कि जाने माने संगीतकार रहे, उनके संगीत निर्देशन में गीत लिखना यूं तो कोई आसान काम न था। उनकी घुमावदार कठिन संगीत धुनों के लिए लिखना योगेश जी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। निस्दिन रजनीगंधा फूल तुम्हारे प्यास लिए मनवा और मेरे अपने फिल्म जैसे कई फिल्मों के लिए उन्होंने गीत रचे और इन गीतों में उनकी कविताएं निखर कर सामने आई। इस तरह से सलिल दा के मापदंडों पर एक गीतकार कवि भी बन सका।

राहुल देव बर्मन के साथ भी उन्होंने काम किया और कई फिल्मों में गीत दिए, जैसे अधूरा आदमी, रंग बिरंगे और मंजिल फिल्म का ये गाना तो हमेशा ही दर्शकों द्वारा पसंद किया जाता है।

तो श्रोताओं, गीतकार योगेश जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी सादगी थी, जो सीधे दिल पर दस्तक देती थी। उनकी रचनाओं में जीवन की अनिश्चितता, उदासी और प्यार का ऐसा तालमेल घुला रहता था जो सुनने वालों को भावुक कर देता था और एक खास अलग ही दुनिया में ले जाता था।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: नए दौर के संगीतकारों के साथ भी उन्होंने काम किया। निखिल विनय की जोड़ी द्वारा संगीतबद्ध बेवफा सनम, चोर और चांद, दुलारा और इंग्लिश बाबू देसी मेम जैसी कई फिल्मों के गीतों की रचना भी योगेश जी ने ही की थी।

श्रोताओं, सैकड़ों फिल्मों में हजारों गीत लिख चुके योगेश गौर जी को संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा यश भारती पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। एक दौर था जब योगेश जी के गीत के बिना कोई भी फिल्म पूरी नहीं होती थी। 29 मई 2020 को वो इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी और हमेशा उनके नगमों के जरिए जिंदा रहेगी। योगेश जी ने अपनी कलम के जरिए जितनी भी गीतों को रचा है वो हमेशा सदाबहार गीत बनकर दर्शकों को लुभाते रहेंगे। उन्होंने साबित किया कि अगर भावनाओं में गहराई है तो शब्दों को बहुत मुश्किल होने की जरूरत नहीं होती। हिंदी सिनेमा का वो युग

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: जी हां श्रोताओं, योगेश जी के गीतों को सुनकर हम कभी मुस्कुराएंगे, कभी गुनगुनाएंगे, कभी उदास भी होंगे, आंखें नम भी होंगी, लेकिन उनके नगमे फिजाओं में हमेशा गूंजते रहेंगे। आज सदाबहार फिल्मी गीतों का सफर यहीं तक। अंजू पांडे के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: श्रोता अभी सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: एफएम 14.8 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी सायंकालीन सभा के सभी प्रसारण मीडियम वेव 187.3 मीटर अर्थात 1602 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र के साथ आकाशवाणी बागेश्वर के एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर भी रिले किए जा रहे हैं। संध्या के ठीक 5 बजे हैं, कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। न्यायालय की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि विद्यार्थियों के विश्वास को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस हुरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर एक तक सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी समझौते के प्रति वचनबद्धता दोहराई। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91.97 लाख करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज

0: 92 अंक गिरकर 74,776 पर बंद हुआ। निफ्टी 359 अंक गिरकर 23,548 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलस्वर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विमला रावत का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

विमला रावत के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ आज का शैलस्वर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 14.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है रूपरेखा हमारी आज की सायंकालीन और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। पहले एक नज़र आज के शेष कार्यक्रमों पर। अब से कुछ देर पश्चात संध्या 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ये वाणी, जिसमें आज की बात का विषय है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। संध्या 5:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम उत्तरायण। भक्ति संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे संध्या 6:41 पर और ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम ग्राम जगत सुनेंगे संध्या 7:00। फिल्म संगीत आप सुनेंगे संध्या 7:40 पर। मिले जुले गीत गजलों का प्रोग्राम सबरस होगा रात्रि 8:00। फिल्म संगीत आप पुनः सुनेंगे इंद्रधनुष कार्यक्रम में रात्रि 9:15 पर और फरमाइशी फिल्मी नगमों के प्रोग्राम आपके अनुरोध पर के अंतर्गत रात्रि 9:30 पर और रात्रि 10:30 पर। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:00। ये थी रूपरेखा हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है 5:55 पर। उसके बाद पश्चात विचार बिंदु और आराधना कार्यक्रम आप सुनेंगे आज की बात। ये कार्यक्रम होगा प्रातः 6:40 पर। कार्यक्रम विविधा आप सुनेंगे प्रातः 6:50 पर और प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे प्रातः 7:20 पर, जो कि हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी आप सुनेंगे प्रातः 7:30 पर। कल इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे जीवन चंद आर्या के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे प्रातः 8:30 पर और फरमाइशी फिल्म नगमों का प्रोग्राम गीत निर्जर होगा प्रातः 9:05 पर। सुगम संगीत आप सुनेंगे सबरंग कार्यक्रम में प्रातः 10:05 पर। कल इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार होंगे जगजीत सिंह और इकबाल पानो। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर बहार आप सुनेंगे प्रातः 10:35 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए होगा प्रातः 11:00। प्रातः 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद आप सुनेंगे दोपहर 12:00। दोपहर 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अर्पण। उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार दोपहर 1:05 पर हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुगम संगीत आप सुनेंगे दोपहर 1:15 पर। दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे नाटक लेफ्टिनेंट विजय राजे का मराठी नाटक का हिंदी रूपांतर। उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनेंगे दोपहर 2:00। किसान भाई अपना कार्यक्रम खेती की बातें सुनेंगे दोपहर 2:30 पर और फिल्म संगीत आप सुनेंगे एक ही फनकार कार्यक्रम में दोपहर 2:45 पर और सभा के अंत में अपराह्न 3:00 सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में। हमारी सायंकालीन सभा रोजाना की तरह आरंभ होती है संध्या 5:00। संध्या 5:05 पर आप सुनेंगे कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलस्वर। कल इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार होंगे महिपाल सिंह मेहता। कल संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम युवा भारती और रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये तीनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी। उत्तरायण कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 5:45 पर और भक्ति संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे संध्या 6:41 पर। किसान भाई अपना कार्यक्रम किसान वाणी सुनेंगे संध्या 7:00। फिल्म संगीत आप सुनेंगे संध्या 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत। मिले जुले गीत गजलों का प्रोग्राम सबरस होगा रात्रि 8:00। ये थी रूपरेखा हमारी आज की सायंकालीन और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। FM 14.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी।

0: युवाणी कार्यक्रम में हाजिर है आपका दोस्त भास्कर साह। सभी श्रोता मित्रों का हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का युवाणी कार्यक्रम हम प्रारंभ करें उससे पहले ये खूबसूरत सी शाम का आगाज करते हैं एक बेहद ही खूबसूरत से गीत के साथ।
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

आइए दोस्तों, अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता विषय पर। पेड़ों से ही सांसों का ये सिलसिला चलता है, धरती का हर जख्म इन्हीं से भरता है। अगर बचाना है आने वाली नस्लों का कल, तो आज से ही पर्यावरण का ख्याल रखना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे विषय पर जो केवल चर्चा का नहीं बल्कि हमारी जीवन रक्षा का विषय है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण। दोस्तों, हमारा पर्यावरण ही हमें जीवन देता है। स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, हरियाली, ये सब हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम इस प्रकृति को बदले में क्या दे रहे हैं? आज जंगल कट रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, हवा जहरीली होती जा रही है, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, वाहन का धुआं और अंधाधुंध विकास, ये सब हमारे पर्यावरण को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। और इसका परिणाम गर्मी बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। ये केवल एक समस्या नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का संकट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि समाधान भी हमारे ही हाथ में है। हम अगर छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसे पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, पानी और बिजली की बचत करना, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना। दोस्तों, अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। पर्यावरण संरक्षण कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी और आदत बननी चाहिए। आइए दोस्तों, आज ही हम सब संकल्प लें कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अगर हम इस पर बात करें तो नदी, हवा और पेड़ों का मान रखना, प्रकृति को अपने दिल में स्थान रखना, यही असली दौलत है इस जीवन की। इसे बचाना ही सबसे बड़ा काम रखना। दोस्तों, पर्यावरण को अगर हमें बचाना है, अपने आप को, अपनी धरती को स्वच्छ व सुरक्षित रखना है, तो हमें अपने आसपास साफ सफाई, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, नदियाँ, नाले, नौले, धारे, सब स्वच्छता रखनी होगी। तभी हम एक अच्छे भविष्य की, स्वस्थ भविष्य की कल्पना कर सकते हैं।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आई दोस्तों, बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम सिने जगत से की ओर। आज इस कार्यक्रम में हम जिक्र कर रहे हैं मशहूर शायर और गीतकार बशीर बद्र साहब की। यहाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शायर की जिनके अल्फाज दिल में उतरते हैं, जो मोहब्बत को सादगी से और दर्द को नज़ाकत से बयां करते हैं। ये हम बात कर रहे हैं मशहूर शायर व गीतकार बशीर बद्र साहब की। आज हम इन्हीं के चंद गज़लों व शायरियों के बारे में जिक्र करेंगे। दोस्तों, बशीर बद्र साहब का जन्म 15

ये शेर वाकई में दोस्तों रिश्तों की गहराई को की समझ को दर्शाता है। उनकी गज़लों में सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि इंसानियत और समझ की सच्चाई भी झलकती है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। वाकई में दोस्तों इस तरह के अनेकों शेर आपने, अनेकों गज़लें आपने अपने पूरे जीवन में फिल्मों के लिए लिखी, मुशायरों के लिए लिखी। तो दोस्तों बशीर बद्र साहब की शायरी हमें सिखाती है प्यार करना, समझना और ज़िंदगी को महसूस करना। तो दोस्तों ये थी चंद शायरियाँ, चंद बातें बशीर बद्र साहब की। वो एहसास है जो अल्फाज से आगे जाकर दिल में उतर जाता है, वो एहसास है जो अल्फाज से आगे जाकर दिल में उतर जाता है। और जब बात हो बशीर बद्र साहब की तो हर शेर एक कहानी बन जाता है, हर लफ्ज़ एक एहसास बन जाता है। वाकई में दोस्तों बशीर बद्र साहब सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि एक एहसास हैं, एक सोच हैं। उनकी शायरी में आपको मोहब्बत की मिठास मिलेगी, जुदाई का दर्द मिलेगा और ज़िंदगी की सच्चाई भी मिलेगी। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो भारी भरकम अल्फाज का सहारा नहीं लेते बल्कि सादगी से दिल की बात कह देते हैं। कोई हाथ भी ना मिलाइएगा तो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाइएगा तो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। दोस्तों बशीर बद्र साहब की शायरी हमें ये भी सिखाती है कि रिश्तों को निभाना सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एहसास से होता है। ज़िंदगी में हम अक्सर लोगों को जल्दी जज कर लिया करते हैं, लेकिन बशीर बद्र हमें सिखाते हैं हर कहानी के पीछे एक अनकही कहानी होती है। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो इस तरह की अनेकों शायरियाँ बशीर बद्र साहब की आपको सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी।

आई दोस्तों, अब वक्त हो चला है कल पूछे गए प्रश्न के उत्तर का। तो कल के अपने इस कार्यक्रम में हमने आपसे प्रश्न किया था, विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म कब हुआ था, और इस प्रश्न का सही उत्तर है 28 मई 1883 को। और इस प्रश्न का जिन श्रोता मित्रों ने सही जवाब दिया है उनके नाम है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, कोटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरेशे, सुषमा सुरेशे और मायरा सुरेशे, ग्राम नागर कोहरा से बबलू साहू, जमुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू और एसएम जावेद गुमला झारखंड से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और नोट करें हमारे आज का प्रश्न, है मशहूर शायर व गीतकार बशीर बद्र साहब का जन्म कब हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आप देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411001122 9411001122 इस नंबर पर मैसेज भेजकर सही उत्तर हम तक पहुंचा सकते हैं। और जिन श्रोता मित्रों के उत्तर सही होंगे उन श्रोता मित्रों के नाम हम अपने कल के युवाणी के इस अंक में प्रसारित करेंगे। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अपने मित्र भास्कर साह को कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी एफएम 14.8 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुनने सब श्रोतान के गोकुल नमस्कार। श्रोताओं, आज संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों अंतर्राष्ट्रीय दिवस और हर साल 29 मई हो यह दिन का मनाई जा। यह दिन दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवारत पुरुषों और महिलाओं का साहस, समर्पण और शांति की स्थापना में उनर अमूल्य योगदान के सम्मानित करने लिए समर्पित छ। यह उद्देश्य छ 4000 है ज़्यादा शांति सैनिकों के श्रद्धांजलि देने लिए मनाई जा। जनूल संयुक्त राष्ट्र झंडा तली अपन कर्तव्य पालन करते हुए अपन प्राणों आहुति दी और यश हालत जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो थीम छ शांति स्थापना और भविष्य विषय में तहत मने ही जान लग रो। और मुख्यालय समारोह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में यह उपलक्ष्य में एक विशेष समारोह आयोजित करी जा, जय तहत शहीद शांति सैनिकों के मरणोपरांत प्रतिष्ठित डेग हेमरजस जोल्ड पदक कल सम्मानित करी जाए। भारतीय योगदान भारत दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे अधिक सैनिक और पुलिस कर्मियों योगदान देने वाले प्रमुख देशों में एक रही थी। तो आज उन सब शांति सैनिकों के हमले श्रद्धांजलि दूँ कि उन्होंल अपनों कर्तव्यों पालन करते हुए और अपन प्राणों का आहुति दी, तो उनका नमन करूँ। तो यह तो छी आज एक बात कार्यक्रम आपको सुनूँ दीवान सिंह कनवाला गई योगी।

सुनिए की नजर न किछु हाउ बयाउ लुकी जा मेर आँखों में बंद कर लो लो पड़ाओ निगुरी छु दुनिया की नजर न किछु हाउ बयाउ लुकी जा मेर आँखों में बंद कर।

गजर दगाड़ा तब होली रोज है बहारा। रोज होली होई दिवाई रोज हरियाई को त्यारा। जब तू होली म्यार दगाड़ा तब होली रोज है बहारा। रोज होली होई दिवाई रोज।

होली बहारा लेण होली गोठ गाई ना जले भरी भकारा लेण होली गोठ गाई ना जले भरी भकारा तू के छोड़ी।

0: दगड़ा तुके चाहिए रू चाहिए रू के तुझन कहे सुबह मैं के निकू चाहिए रू भेट मेर दगड़ा तुके चाहिए रू।
1: श्रोताओं अल्लाह भयो गीत सुनिछ गायक छी दीवान सिंह कनवाल।

0: श्रोताओं लखयो गीत सुनी छ गायिका छी दीपा चौहान। कार्यक्रममा आपको सुनुनु बागवानी दगड़ दगड़े फूलों खेत में आय अर्जित करते ग्राम महतोलिया विकास खंडधारी जिला नैनतालक कृषक श्री कमल महतोलिया जी दगे क्षेत्र संकलित यो बातचीत।
1: बात कर रहे हैं राम महतोलिया पहाड़ पानी विकास खंड धारी जिला नैनीताल के कृषक श्री कमल महतोलिया जी से। महतोलिया जी ये बताइए अभी आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं?
2: सर मेरा मुख्य रूप से फूलों का काम है
1: जी,
2: जिसमें लीलियम फ्लावर का काम है और परंपरागत खेतियां भी हैं जैसे आलू की खेती है और सब्जी वब्जी शिमला में कुछ सेब भी है, कुछ ब्लूबेरी भी लगा हुआ है, कुछ स्ट्रॉबेरी भी लगा हुआ है, कीवी के भी कुछ प्लांट हैं, 100-150 प्लांट कीवी के हैं, इसी बार स्टार्ट किया है।
1: अच्छा,
2: इन चीजों में काम कर रहे हैं।
1: मतलब बागवानी के साथ साथ आप फूलों की खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं?
2: जी, तो मुख्य काम फूलों की खेती का है। सेब तो हमारा होता ही था, पहले से होता था, लेकिन अब नई नई वेरायटी आ गई है, उनको लाए हैं, कुछ हिमाचल से आए हैं, कुछ इक्कीस आए हैं, बाकी कीवी का प्रोजेक्ट लगा है।
1: अच्छा, बहुत ज्यादा आजकल हम देखते हैं कीवी की बहुत मांग है बाजार में, कितना हो जा रहा है कीवी आपका?
2: सर कीवी तो इसी बार स्टार्ट किया है, ये प्लांट लगे हुए अभी करीब 3-4 महीने हुए हैं। हमारे हॉर्टिकल्चर की एक स्कीम थी कोई,
1: अच्छा अच्छा,
2: कीवी नीति की करके उसमें 1 हेक्टेयर में कीवी के प्लांट लगे हुए हैं।
1: अच्छा,
2: तो अभी प्रोडक्शन का तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 1-1.5 साल में उत्पादन शुरू होने का लग रहा है कि स्टार्ट हो जाएगा।
1: मतलब कीवी की अभी आपने शुरुआत ही की है, वैसे अन्य फल होते हैं?
2: अन्य फल होते हैं सर, सेब तो हमारे वहाँ ये जेनेटिक ही है, पहले से ही सेब की खेती पहाड़ पानी में बहुत।
1: अच्छा,
2: अब पहले तो एक हरी पर तरह की वेरायटी होती थी, अब बिल्कुल कलर कंसंट्रेट वेरायटी आ रही है, जो की छोटे में ही कलर आने लग जाता है, तो मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है।
1: अच्छा अच्छा,
2: वो वेरायटी हम इम्पोर्ट करके ला रहे हैं और उनको लगा रखा है, और अर्ली वेरायटियां भी है जो की अर्ली जुलाई में हार्वेस्ट हो जाती है मार्केट के लिए, तो मार्केट अच्छा मिल जाता है इसका।
1: अच्छा, मतलब ठीक ठाक आमदनी हो जाती है?
2: ठीक ठाक सर, हाँ, पारंपरिक खेतियों से अच्छा है कि इन खेतियों की तरफ गए हैं तो उससे फायदा हो रहा है।
1: हाँ, जरूरी भी है कि आज हम वैज्ञानिक तरीके से अगर बनी करें तो निश्चित और अच्छा लाभ इसमें प्राप्त हो सकता है।
2: जी हाँ, ये तो है। अब ये जो हम लीलियों की खेती करते हैं के अंदर करते हैं, तो इसमें प्राकृतिक आपदाओं का कोई वो नहीं रहता है, ज्यादा बारिश हो गई, ओले गिर गए, तो उससे हमारी फसल संरक्षित रहती है। और जंगली जानवर जो कि आज एक बहुत बड़ा वो बन गया है, दिक्कतें हो गई है जंगली जानवर की, बंदर है रात को और सुअर है और जानवर है, तो खेती को बहुत नुकसान करते हैं, तो इसलिए हम इंडोर खेती की तरफ आगे बढ़े। 2013 में सर मैंने फूलों की खेती का काम शुरू किया था।
1: जी, फूलों की खेती जो आप कर रहे हैं ये मतलब पॉली हाउस के अंदर?
2: जी, पॉली हाउस, सारा पॉली हाउस में है।
1: अच्छा, तो कितने जमीन में लगा रखा आपने?
2: सर ये मेरा करीब 40 नाली जमीन में पॉली हाउस लगे हुए हैं। हाँ, मैंने 2013 में ये काम शुरू किया था।
1: अच्छा,
2: पढ़ाई लिखाई करने के बाद रोजगार नहीं मिल पाया, नौकरी गई, नौकरी में उतना मन नहीं लगा, तो घर पुछते नहीं, वही था हमारा, एग्रीकल्चर ही था। तो फिर इसकी तरफ को आगे बढ़े तो इसमें थोड़ी सा सफलता प्राप्त हुई।
1: बहुत अच्छी बात है, जब हमारे पास साधन है, हमारे पास जमीन है, तो हम क्यों ना उसको आगे बढ़ाए। बहुत अच्छी बात है, आप एक प्रेरणा स्रोत है सबके लिए, मतलब कुल मिला अच्छा हो रहा है, इसलिए फूलों की खेती पर आज ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
2: जी सर, मेन जो काम है फूलों की खेती है, बाकी और चीजें ऐसा है की प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, अब ये ऐसा है कि कभी खत्म हो जाती है, तो हाइट से थोड़ा बचाव करने के लिए, अपने दाल रोटी चलाने के लिए और चीजें भी रहती हैं, जो कि लेबर का खर्चा निकल जाए और कभी कोई दिक्कत आ गई, फूलों में कोई परेशानी, तो सेब भी लगे हुए हैं, थोड़ा सेब से रिकवरी।

विजित करते ग्राम महतुल्या पहाड़ पानी विकासखंडधारी जिला नैनीताल कृषक श्री कमल महतुल्या जी दग क्षेत्र संकलित बातचीत कार्यक्रम में आपको सुनू संदीप सोनू गई योगीत।

श्रोताओंला आप गीत सुनी छ गायिका छी संगीता ढोडियाल कार्यक्रम में आपको एक और गीत सुनू गायिका छन तनुजा नौटियाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण FM 100.8 MHz पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल।

0: पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। मुख्य सचिव ने खाद्य सामग्री, डीजल पेट्रोल, LPG व अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य स्थिति पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। और विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और नैनीताल जिले के सभी वन प्रभागों में हाथियों की गणना का कार्य जारी। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है, वो रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली बैठक विधायकों और सांसदों के साथ हुई। बैठक में सभी विधायकों और सांसदों को आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर तैयार रहने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने विधायकों के कामकाज की भी समीक्षा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी विधायकों सांसदों को अपने अपने क्षेत्र से 100 बुद्धिजीवियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों पर सांसदों को विशेष फोकस रखने को कहा गया है।
3: हमारी आज के दिन की पहली बैठक सांसद और विधायक की बैठक थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2027 के चुनाव की दृष्टि से सभी विधायकों और सांसदों को उन सब बातों की ओर उनका ध्यान केंद्रित किया जो चुनाव में जीत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यों की गांव-गांव तक चर्चा पहुंचे, इसके लिए जहां ग्राम संपर्क के लिए सभी सांसदों विधायकों से कहा गया है, वहीं प्रत्येक विधानसभा के 100 बुद्धिजीवी लोगों की सूची बनाकर उनसे भी संपर्क उनके द्वारा हो, ऐसा मार्गदर्शन अध्यक्ष जी ने किया है।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: विश्व प्रसिद्ध

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और नैनीताल जिले के सभी वन प्रभागों में हाथियों की गणना का कार्य गतिमान है। वहीं जिम कॉर्बेट पार्क गणना का अभियान 30 मई तक जारी रहेगा। वन विभाग के 150 से अधिक कर्मचारी और विशेषज्ञ गणना का कार्य कर रहे हैं। अपर प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव विवेक पांडे ने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों के साथ साथ हाथियों की भी नियमित गणना कराई जाती है। इस बार हाथियों की गणना वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है। इसके लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान का सहयोग लिया जा रहा है। हर रेंज में अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जिनमें वन कर्मियों के साथ WII के शोधकर्ता भी शामिल हैं। ये टीमें हाथियों की गतिविधियों, उनके मूवमेंट, झुंड की संख्या और निवास क्षेत्रों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार

0: इस बार हाथियों की गणना वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है। इसके लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान का सहयोग लिया जा रहा है। हर रेंज में अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जिनमें वन कर्मियों के साथ WII के शोधकर्ता भी शामिल हैं। ये टीमें हाथियों की गतिविधियों, उनके मूवमेंट, झुंड की संख्या और निवास क्षेत्रों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करेंगी।
1: अभी हमने फिर से जो है वो डायरेक्ट साइटिंग के माध्यम से किस तरीके से एलिफेंट्स को काउंट किया जा सकता है, इसके लिए पुनः जो है सहयोग लिया WII से, और दो ट्रेनिंग इसमें इसी माह कराई गई थी। और उन ट्रेनिंग के कम्पलीशन के एक कुमायूं में, एक गढ़वाल में, सारे स्टाफ को पहले वेल इक्विप किया गया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है।
0: मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आज सचिवालय में प्रदेश में खाद्यान्न व दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को लेकर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने आयुक्त खाद्य BL राणा से प्रदेश में दैनिक आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने आमजन की रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की उचित दरों पर निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को नियमित निगरानी करने को कहा। उन्होंने कहा कि बाजार में खाद्य सामग्री, डीजल, पेट्रोल, LPG व अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य स्थिति पर सतत निगरानी रखी जाए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्य सचिव ने आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी व कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को कहा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश की दूसरी खाद्य परीक्षण लैब को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून को अनिवार्य रूप से लोकार्पित करने के निर्देश दिए हैं। आज मुख्य सचिव सचिवालय में सुरक्षित भोजन व स्वस्थ आहार पर गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की 6वीं बैठक की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने खाद्य पदार्थों की जाँच पढ़ाए जाने के लिए राज्य सेक्टर के बजट में प्रावधान किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाले बजट के लिए एक कॉर्पस भी बनाया जाए, ताकि खाद्य पदार्थों की नियमित जांच की जा सके। उन्होंने मिलावटखोरी में संलिप्त व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए। चंपावत जिले के गुरुद्वारा रीठा साहिब में सालाना जोड़ मेला आज से शुरू हो गया है। 31 मई तक आयोजित होने वाले मेले का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी डॉ GS खाती ने किया। मेले का मुख्य पर्व कल बैसाख पूर्णिमा को होगा। पहले दिन देश विदेश के हजारों यात्रियों ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्य विकास अधिकारी डॉ GS खाती ने बताया कि जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रख रहा है, जिसके तहत अस्थायी पार्किंग, स्नान के लिए नदी तट पर कच्चे पुल का निर्माण, लंगर व विश्राम स्थलों की सुचारू व्यवस्था की गई है। चमोली जिले में मौसम ने अचानक करवट ली है। बारिश के चलते गर्मी और जंगलों में लगी आग से राहत मिली है। कल देर शाम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुई मूसलाधार बारिश के चलते तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। बारिश के कारण जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं लंबे समय से धधक रहे जंगलों की आग पर भी काफी हद तक काबू पाया गया है। जिले के गोपेश्वर, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, गैरसैंण तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। बारिश के बाद वातावरण में ठंडक घुल गई और पहाड़ों पर छाए धुएं से भी लोगों को निजात मिली। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार वर्षा से वनाग्नि की घटनाओं में कमी आई है तथा कई स्थानों पर आग स्वतः बुझ गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। मुख्य सचिव ने खाद्य सामग्री, डीजल, पेट्रोल, LPG व अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य स्थिति पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। और विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और नैनीताल जिले के सभी वन प्रभागों में हाथियों की गणना का कार्य जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। आज के भक्ति संगीत कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं हरिओम शरण के गाए इस भक्ति वंदन के साथ।

हरि ओम शरण और साथियों के स्वर में अभी आए आपने ये भक्ति वंदन सुना। आइए भक्ति संगीत कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं राम शंकर के स्वर में ये भक्ति गीत।

0: रामशंकर के स्वर में अभी आपने भक्ति वंदन सुना। इसी के साथ भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी कल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 होने को हैं। कुछ ही पलों में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार गढ़वाली में हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे।
1: आकाशवाणी देहरादून बटे गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में सरिता भट्ट। पहली मुख्य समाचार, दून विश्वविद्यालय में ब्रिक्स अकादमिक मिड टर्म सम्मेलन 2026 को आयोजन। वैश्विक चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से जुड़िया मुद्दों पर विशेषज्ञों ने विचार विमर्श करिन। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराजन बोली, राज्य में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रेल कनेक्ट

0: कनेक्टिविटी और स्वरोजगार का क्षेत्र में तेजी से विकास काम होना छिन। मुख्य सचिव आनंद वर्धनन प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों की समीक्षा की, कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई तथा नियमित निगरानी का निर्देश दिन, और उत्तराखंड में बरखा और तेज बथों से गर्मी व वनाग्नि से राहत, कुछ क्षेत्रों में बिजली और यातायात प्रभावित, अधिकांश जगहों पर स्थिति सामान्य। अब समाचार विस्तार से। दून विश्वविद्यालय में आज ब्रिक्स अकादमिक मिड टर्म सम्मेलन 2026 को आयोजन करेगा। सम्मेलन में भारत सहित ब्रिक्स का साझेदार देशों का शिक्षाविदों, नीति विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं वैश्विक चुनौतियों तथा सतत विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करें। उद्घाटन सत्र में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को वीडियो संदेश प्रसारित करेगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धनन सम्मेलन का महत्व पर प्रकाश डाली, जबकि विदेश मंत्रालय का संयुक्त सचिव और ब्रिक्स शेरपा शंभू एस हल्किन ब्रिक्स देशों का भी सहयोग थे भगत की आवश्यकता बताए। सम्मेलन में खंडित वैश्विक अर्थव्यवस्था में हरित औद्योगिक परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों की भूमिका तथा हरित बदलाव खुणे जलवायु वित्त का विस्तार जना विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित करेगा। विभिन्न देशों का विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन, हरित विकास और सतत विकास से जुड़े मुद्दों पर अपना विचार साझा करें। एक विशेष सत्र में क्रेडिट रेटिंग की पुनर्कल्पना, संप्रभुता, जोखिम और नई वित्तीय व्यवस्था विषय पर चर्चा हुई और एक विशेष रिपोर्ट को विमोचन भी करेगा। वक्ताओं ने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका थे और मजबूत बनाने पर जोर दे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराजन बोले कि राज्य में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रेल कनेक्टिविटी और स्वरोजगार का क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य होना छिन। उन बोले कि प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी करेगी। एक रिपोर्ट।
1: पौड़ी जिला का चौबटाखाल विधानसभा क्षेत्र में स्वाभिमान पर्व पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित करे गया। शिविर उद्घाटन का वक्त प्रदेश का पर्यटन मंत्री सतपाल महाराजन बोल के एकेश्वर ब्लॉक में पानी, सड़क और अन्य योजनाओं पर काम करे गया। उन बोल की पानी की योजना, सड़क, पंचायत घर और सिंचाई परियोजनाओं का माध्यम से क्षेत्र का लोगों थे सभी सुविधा दिए जाली। बहुउद्देशीय शिविर में जन सुनवाई भी हुआ। 19 दिव्यांग थे, दिव्यांग प्रमाण पत्र दिए गए। समस्या काउंटर पर 58 शिकायत और 55 मांग पत्र मिलनी, समस्या समाधान का वास्ता अधिकारियों थे निर्देश दिए गए। शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, समाज कल्याण, बिजली और जल संस्थान आदि विभागों स्टॉल लगेनी और लोगों थे विकास योजनाओं की जानकारी देनी। आकाशवाणी देहरादून का वास्ता समाचार कक्ष बटी डॉक्टर विनोद पोखरियाल।
0: मुख्य सचिव आनंद वर्धनन प्रदेश में खाद्यान्न और दैविक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा कीमतों की समीक्षा करी। सचिवालय में आयोजित बैठक में उन अधिकारियों से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य स्थिति की जानकारी ले। बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग का अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए एक आम जन थे रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं उचित दरों पर निर्बाध रूप से उपलब्ध हों, ये खुणे नियमित निगरानी सुनिश्चित करे जा। उन बोली कि खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल, LPG और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता तथा कीमतों पर लगातार नजर रखे जा ताकि लोगों थे कै भी प्रकार की परेशानी को सामना न करण पोड़। श्री वर्धन ने आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी और कृत्रिम अभाव पैदा करण वालों का खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिन। यहाँ खुणे बाजारों, गोदामों और थोक विक्रेताओं की नियमित जाँच करणों को बोले गया। मुख्य सचिवन बोली कि प्रदेश सरकार बाजार व्यवस्था थे सुचारू बनाए रखना और आम जन थे राहत देने खुणे प्रतिबद्ध। उन सभी जनपदों विशेष रूप से चार धाम यात्रा से जुड़े जिलों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य निमंत्रण पर ध्यान देना तथा कै भी प्रकार की नियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिन। राजकीय महाविद्यालय बिथाणी यमकेश्वरमा इतिहास विषय का असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमेश त्यागी थे फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों का आधार पर नौकरी पाण का मामले में सेवा से बर्खास्त करे गया। विभागीय जांच में उनका BA प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की अंक तालिका में गंभीर विसंगतियां पाईगी। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से करेगा।

0: तक प्रस्तुत अंक प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय का अभिलेखों से मेल निकले। जांच का दौरान डॉक्टर त्यागी थे अपने पक्ष रखने को अवसर भी दिए गया, पर वो स्पष्टीकरण देना खुणे उपस्थित नहीं हुई। विभागीय जांच रिपोर्ट का आधार पर बर्खास्तगी को प्रस्ताव उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत थे भेजे गया, जैसे उन मंजूरी दिया ली। एक बाद डॉक्टर त्यागी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करेगी।
1: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और नैनीताल जिला का सभी वन प्रभागों में हाथियों की गणना को काम जारी च। यह अभियान 26 से 30 मई तक चले जाणु च, जैका तहत सभी बीटों में हाथियों की संख्या और उनकी गतिविधियों को आंकलन करे जाणु च। ये काम में 150 से ज्यादा वन कर्मी और विशेषज्ञ जुटिया छिन। एक रिपोर्ट।
2: पौड़ी जिला में ब्याली रात तेज बथाओं और बरखा का कारण कई स्थानों पर विद्युत लाइन और पोल क्षतिग्रस्त वेगिन, जहां से बिजली आपूर्ति प्रभावित वेज। विद्युत विभाग की टीमों तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करें और अधिकांश क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल करयाली। कुछ स्थानों पर मरम्मत का कार्य अभी भी चलना छिन। वखी ढापखाल देवियो खाल मोटर मार्ग पर मलबा और ढूंगा आण से यातायात प्रभावित हुए छो, जहाँ से हटाकर मार्ग थे हल्का वाहनों को सुचारू करयाली। चमोली मां अबेर विखुंदा वे बरखा से तापमान मां गिरावट दर्ज करेगी छ। दगड़ा ही लंबा बगत बटे जंगलों मां लगी बणांग पर भी काफी हद तक काबू पाएगी छ। वन विभाग का अनुसार कई स्थानों पर बणांग अपना आप बुझेगी छ और बणांग की घटनाओं मां कमी आई छ। आकाशवाणी देहरादून खुण समाचार कक्ष बटे आशना कंडियाल नेगी।
0: उत्तराखंड मां मौसम विभाग का बदलता मिजाज ने एक ओर लोगों थे गर्मी और बनाग्नि से राहत दे, तो वखी कई क्षेत्रों में तेज बथों और बरखा का कारण बिजली आपूर्ति और यातायात व्यवस्था की प्रभावित हुए। हालांकि प्रशासन और संबंधित विभागों की त्वरित कार्रवाई से अधिकांश जगहों पर स्थिति सामान्य करेगा। ये बीच राज्य में कुछ हिस्सों में आने वाले दिनों में भी बरखा की संभावना च। मौसम विभाग ने राज्य का कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि और आंधी को येलो अलर्ट भी जारी करूँ च। भारतीय रिजर्व बैंक का मार्गदर्शन में राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर और SBI RCT में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और आम नागरिकों थे बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल लेन देन और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। शिविर में प्रतिभागियों को KYC की अनिवार्यता, re-KYC प्रक्रिया, केंद्रीय KYC और सुरक्षित बैंकिंग व्यवहार की जानकारी दिए गया। दगड़ा ही डिजिटल लेन देन का दौरान बरती जाने वाली सावधानियों तथा फर्जी कॉल मैसेज और संदिग्ध लिंक का माध्यम से होने वाली साइबर ठगी से बचाव का उपाय बताएगी। आगामी कांवड़ मेला की तैयारियों थे लेके हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करे गया। ये दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों थे सड़कों की मरम्मत और सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिन। उन कांवड़ मेला से पहले सभी सड़कों थे गड्ढा मुक्त करना पर जोर दिया। सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण अनुसरण समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अधिकारियों थे निर्देश दिन कि उनका अधीन आने वाली सभी सड़कों पर पैच वर्क और मरम्मत कार्य प्राथमिकता का आधार पर पूर्व करे जाओ। जिला अधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण खुणे तेज रफ्तार, शराब पीकर वाहन चलान, ओवरलोडिंग करण, बिना हेलमेट वाहन चलान और यातायात नियमों को उल्लंघन करण वालों का खिलाफ सख्त कार्रवाई की निर्देश दिन। दगड़ा ही सड़कों पर अतिक्रमण न होने देण खुणे भी संबंधित अधिकारियों थे आवश्यक कार्रवाई करने को बोली। अंत में मुख्य समाचार एक दा फिर। दून विश्वविद्यालय में ब्रिक्स अकादमिक मिड टर्म सम्मेलन 2026 को आयोजन। वैश्विक चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से जुड़िया मुद्दों पर वैज्ञानिकों ने विशेषज्ञों ने विचार विमर्श करें। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराजन बोली, राज्य में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रेल कनेक्टिविटी और स्वरोजगार का क्षेत्र में तेजी से विकास काम होनो छन। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता और कीमतों की समीक्षा करी। कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई तथा नियमित निगरानी का

0: निर्देश दिन और उत्तराखंड में बरखा तेज बथों से गर्मी तथा वनाग्नि से राहत। कुछ क्षेत्रों में बिजली और यातायात प्रभावित, अधिकांश जगहों पर स्थिति सामान्य। एक अदगड़ी ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को युवांक समाप्त हूँ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं के मैं नीरू गोस्वामी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत छो आप सब लोगों का हमारे आजक ग्राम जगत कार्यक्रम में। श्रोताओं, ग्रामीण क्षेत्रों के विकासक बिना देशक समग्र विकास संभव नहीं छो। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार जस सुविधाओं के बेहतर बनौने के लिए सड़क संपर्क अत्यंत आवश्यक हों। यही उद्देश्य के ध्यान में रखते हुए श्रोताओं, भारत सरकार अल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY की शुरुआत करी। यह योजना ग्रामीण विकासक दिशा में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम मानी जा। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 के भारत सरकार द्वारा करी गई थी। यह योजना का मुख्य उद्देश्य उन ग्रामीण बस्तियों के पक्की सड़कों जोड़ने छो जहाँ सड़क सुविधा उपलब्ध नहीं छो। यह योजना विशेष रूप पर दूर दराज और पिछड़ी वाल जो गांव छिन उनर विकास के लिए बनाई गई छी। श्रोताओ, यह योजना का कुछ उद्देश्य छी गांव के सर्वकालिक पक्की सड़कों जोड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा के बेहतर बनून, किसानों के अपन उपज बाजार तक पहुँचने में सहायता देना और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों को पहुँच जो छो वो आसान बनोन छो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के बढ़ावा देने लय यह एक उद्देश्य छी और गांव और शहरों बीच दूरी के कम करने लय यह एक उद्देश्य छी। और श्रोताओ, यह योजना जो छो वो कई विशेषताएँ ले छिन। यह योजना के अंतर्गत मजबूत और टिकाऊ सड़कों का निर्माण करी जाए ताकि बारिशक मौसम में यातायात प्रभावित ना हो और दूरस्थ गांव के मुख्य सड़कों और शहरों जोड़ना कार्य इमें करी जा। श्रोताओ, सड़क निर्माण में नई तकनीकों और गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करी जा जमें सड़क लंबे बखत तक टिकाऊ रहे और योजना कार्यों का निगरानी के लिए विशेष प्रबंधन प्रणाली बनाई गई जल निर्माण कार्य गुणवत्ता सुनिश्चित करी जा सको। श्रोताओ, सड़क सुविधा मिलनर नांतिनों के स्कूल और कॉलेज जाने में आसानी है। पहली जहाँ बरसात में बाट बंद है जाछी, अब वहाँ नियमित रूप पर शिक्षा प्राप्त करण संभव हो सको और अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचना आसान होनल, मरीजों के बखत पर उपचार मिल जा और गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों के लिए यह योजना बहुत लाभकारी सिद्ध है। श्रोताओ, बात करनो किसानों के लिए तो किसान अपन फसल के आसानील मंडियों तक पहुँचा सकनी यह उनके उचित मूल्य मिलूँ और उनर आय में वृद्धि लें।

और सड़क निर्माण कार्यों स्थानीय लोगों के रोजगार ले मिलूं। दगड़ में ही बेहतर संपर्क कर कारण गांव में छोट उद्योग और व्यापार ले यहल विकसित है। शुद्ध ग्रामीण क्षेत्रों तेजी यहल विकास होने लाग रहो और लोगों के जीवन स्तर बेहतर होने लाग रहो। परिवहन सुविधा आसान और सुरक्षित बढ़ने और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि है छो और सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क ले यह योजना द्वारा बढ़ी छो। श्रोतो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारतक विकासक आधारशिला बन गए और यह योजना लाखों गांवक विकासक मुख्य धारा जोड़ने कार्य करो। बेहतर सड़क संपर्कक कारण ग्रामीण लोगों के जीवन में शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और व्यापारक नई अवसर उत्पन्न है। यह योजना केवल सड़क निर्माण तक ही सीमित नहीं छू बल्कि यह ग्रामीण भारत के आत्मनिर्भर समृद्ध बनुणक दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास छू। यह कह लीजिए कही जा सकूँ कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देशक समग्र विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग रहे हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अल्लय अपुलोगुन सुनो नंदलाल आर्याक स्वर में गायो लोकगीत। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अगिल कह सुनो या क्षेत्र संगलित भेंट वार्ता। मुर्गी पालन कर आय अर्जित करने वाल मुर्गी पालक विनीत गौतम जू दगड़ बातचीत। और यछिन ब्लॉक हवाल भाग जिला अल्मोड़ा। और इनर दगड़ भेंट करण लागरी नीरू गोस्वामी। देश एक कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश लोग खेती और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इससे अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। आज के समय में बढ़ती जनसंख्या के साथ अंडे और मांस की मांग लगातार बढ़

0: बढ़ती जा रही है, जिससे मुर्गी पालन एक लाभदायक व्यवसाय बन सकता है। श्रोताओं, मुर्गी पालन का अर्थ है अंडे और मांस के लिए मुर्गियों को पालना और इसे छोटे स्तर से लेकर व्यावसायिक स्तर तक किया जा सकता है। गाँव में लोग इसे घर के पास ही शुरू कर सकते हैं। श्रोताओं, मुर्गी पालन एक सरल और लाभदायक व्यवसाय है जिसे कोई भी व्यक्ति थोड़ी जानकारी और मेहनत के साथ शुरू कर सकता है। यदि इसे सही तरीके से किया जाए तो यह न केवल आय का अच्छा स्रोत बन सकता है बल्कि ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए मुर्गी पालन को अपनाकर हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। आज हमसे बातचीत कर रहे हैं मुर्गी पालन कर आय अर्जित करते श्री विनीत गौतम जी। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। विनीत जी, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आपके पास अभी कितनी मुर्गियां हैं?
1: मेरे पास 15-20 मुर्गियां हैं।
0: जी जी अभी? जी, तो कितना समय हो गया है आपको ये मुर्गी पालन करते हुए?
1: मेरे को 3-4 साल से ऊपर हो गया है।
0: जी विनीत जी, जैसे आपने अभी ये मुर्गियां पाली हैं, तो इससे एक दिन में लगभग एक मुर्गी कितना उत्पादन देती है, यानी कि एक दिन में आपके पास कितने अंडे हो जाते हैं?
1: मैडम, मुर्गी होती है एक दिन में एक बार ही अंडा देती है मुर्गी, तो जैसे मेरे पास 10-15 मुर्गियां होती है तो उनमें से 12-13 अंडे तो निकले जाते हैं।
0: अच्छा, तो हाँ। एक महीने में लगभग कितनी आय अर्जित आप कर लेते हैं इन मुर्गी पालन करके?
1: ये हमारा घर का अंडा तो 10 रुपए के हिसाब से ही जाता है। तो 36 360 अंडे हुए, 12 के हिसाब से भी लगाओ तो 360 3600 रुपए।
0: जी, तो विनीत जी, जैसे आप मुर्गी पालन करते हैं तो इनकी साफ सफाई और इनका रख रखाव आप किस प्रकार करते हैं?
1: मैडम, उनके नीचे भूसा वगैरह डाला जाता है और रोज तो नहीं, हर हफ्ते भर में एक आध बार उसमें रोज उसकी जो गंदगी होती है वो बाहर सब सफाई करके फिर अंदर उनको मुर्गियों को रख दिया जाता है।
0: अच्छा विनीत जी, जैसे मुर्गियों में अक्सर बीमारी लगने का खतरा रहता है, तो इससे बचाव के लिए आप क्या करते हैं?
1: हमारे वहाँ नजदीकी कहते पशुपालन हॉस्पिटल है, वहाँ उनसे डॉक्टर साहब से पूछ के वेटनरी हॉस्पिटल में कर लेते हैं।
0: अच्छा, तो जैसे कोई दूसरी मुर्गी को बीमारी ना लगे, इसलिए आप क्या करते हैं?
1: उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर पाते, बट इतना है कि यहाँ से जैसे पूछा तो पूछने के बाद डॉक्टर साहब से, यहाँ से पूछने के बाद हमारा नजदीकी रहता है, पूछने के बाद हम उसमें वही जो दवाई हवाई देते हैं वो लोग उसी से रखा, अगर बाई चांस कोई मुर्गी उनमें से कोई बीमार हो रही है तो उसको अलग कर देते हैं किसी अलग बाड़े में।
0: जी जी जी, तो इनका चारा आप किस प्रकार से तैयार करते हैं, यानी कि इनको क्या क्या चारा आप देते हैं?
1: चारा एक तो हम मार्केट से दाना ही खरीद के लाते हैं, बाकी जो हमारे घर का राशन पानी होता है वो भी देते हैं।
0: जी, तो जैसे कि आप ये व्यवसाय करते हैं, अंडा उत्पादन करते हैं, तो आपको कैसा लगता है कि हमें स्वरोजगार करना चाहिए मुर्गी पालन करके?
1: बिल्कुल करना चाहिए, जैसे आजकल हम लोग बेरोजगारी पे खाली बैठे हैं तो हमारा यही मुर्गी पालन ही बेस्ट हो जाता है, इससे थोड़ा कुछ तो अर्निंग हो ही जाती है।
0: आपने हमसे बातचीत करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओ, अल्लाह आप लोगों सुनन लग रहा था, एक क्षेत्र संकलित भेंट वार था मुर्गी पालन कर आय अर्जित करने वाले मुर्गी पालक विनीत गौतम जी, ब्लॉक हवालबाग दगड़ भेंट वार था और इना दगड़ भेंट करन लग रही थी नीरू गोस्वामी। श्रोताओ, बात करनो समन्वित मत्स्य पालन हम कसिक आय अर्जित कर सकनो, तो श्रोताओ समन्वित मत्स्य पालन किसान एक जाग में कई प्रकारक आय प्राप्त कर सकनी, माछक दगड़ अंड दूध मांस या धानक उत्पादन ले हूँ जैल कुल लाभ बढ़ जा। श्रोताओ, यह प्रणाली में पशुओं का गोबर या अपशिष्ट तालाबक लीजिए प्राकृतिक खाद काम करूँ, यह तालाब में पलवक बढ़नी जो माछों का भोजन बनूनी, यह प्रकार अलग हवेर अधिक खर्च निकरण बनो। और श्रोताओ, समन्वित मत्स्य पालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ोन में सहायक हूँ, यह परिवार कई सदस्य अलग अलग कार्यों जुड़ सकनी और जब विभिन्न गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी

तब उत्पादन लागत कम है जा। उदाहरण लीजिए मुर्गी पालन निकलने वाल अपशिष्ट माछों के लीजिए खाद काम करूं, और यह प्रणाली पर्यावरणक अनुकूल मानी जाए क्योंकि इनमें अपशिष्ट पदार्थों के पुनः उपयोग करी जाए, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का दोबारा उपयोग करी जाए, यह प्रदूषण कम हो और प्राकृतिक संतुलन यह बनी रू, और मछली जो छू वो प्रोटीन भल स्रोत छू, एक दगड़ दूध अंडे और अन्य उत्पादन मिलनल परिवार के संतुलित आहार प्राप्त हों। श्रोताओं, समन्वित प्रणाली में तालाबक किनारों पर साग या फलदार पौधे लगाई जा सकनी, यह भूमिक पूर्व उपयोग संभव हों। तो श्रोताओं, समन्वित मत्स्य पालन आधुनिक कृषि एक लाभकारी और टिकाऊ पद्धति छू। इमें किसानों की आय बढ़े, रोजगार मिलूं और संसाधनों का सही उपयोग हो। श्रोताओं, वर्तमान बखत में बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधनों के देखते हुए यह प्रणाली ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। यह कह लीजिए किसानों के यह पद्धति को अपनौने के लिए प्रोत्साहित करी जानी चाहिए।

श्रोताओं, अल्लाह कार्यक्रम में आप लोगों सुनो संवेद स्वर में गाई और लोकगीत, और कार्यक्रम में आगे के सुनो गोकुल सिंह बिष्ट और ओनर दगड़ियों स्वर में गाई और लोकगीत।

श्रोता गोकुल सिंह बिष्ट और उनर दगड़ियों स्वर में गाई यही लोकगीतक दगड़ हमार आजक ग्राम जगत कार्यक्रम इति के संपन्न हो। भोल अपू दगड़ फिर भेंट होल एल नीरू गोस्वामी के अनुमति दियो। नमस्कार।

अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत FM 100.8 MHz पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचारों दगड़े में कुसुमलता पिलखवाल। पहली मुख्य समाचार। दून विश्वविद्यालय में ब्रिक्स अकादमिक मिड टर्म सम्मेलन 2026 तक आयोजन। वैश्विक चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास बटी जुड़ी मुद्दों पर विशेषज्ञों विचार विमर्श करो। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराजल को राज्य में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रेल कनेक्टिविटी और स्वरोजगारक क्षेत्र में तेजिल विकासक काम होनई। मुख्य सचिव आनंद वर्धनल प्रदेश में जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों की समीक्षा करी। कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई और नियमित निगरानी के निर्देश ले दी। और उत्तराखंड में दियो और तेज बयावल गर्मी और वनाग्नि बटी राहत। कुछ क्षेत्रों में बिजली और यातायात प्रभावित, ज्यादातर जगहों में स्थिति सामान्य। अब समाचार विस्तार सुनो। दून विश्वविद्यालय में आज ब्रिक्स अकादमिक मिड टर्म सम्मेलन 2026 तक आयोजन करेगो। सम्मेलन में भारत दगड़े ब्रिक्स और साझेदार देशों शिक्षाविदों, नीति विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं, वैश्विक चुनौतियों और सतत विकास बटी जुड़ी मुद्दों पर विचार विमर्श करो। उद्घाटन सत्र में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह वीडियो संदेश प्रसारित करो। मुख्य सचिव आनंद वर्धनल सम्मेलनक महत्व पर प्रकाश डालो, जबकि विदेश मंत्रालय संयुक्त सचिव और ब्रिक्स शेरपा शंभू एस हकील ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग के बखतक आवश्यकता बता। सम्मेलन में खंडित वैश्विक अर्थव्यवस्था में हरित औद्योगिक बदलाव, जैव विविधता संरक्षण और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों की भूमिका और हरित बदलावक लीजी जलवायु वित्तक विस्तार जस विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित करी गई। अलग अलग देशों के विशेषज्ञों जलवायु परिवर्तन, हरित विकास और सतत विकास बटी जुड़ी मुद्दों पर अपू विचार साझा करी। एक विशेष सत्र में क्रेडिट रेटिंग्स का पुनर्कल्पना, संप्रभुता, जोखिम और नई वित्तीय व्यवस्था विषय पर चर्चा है और एक विशेष रिपोर्टक विमोचन लय करीगो। वक्ताओं वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका के और मजबूत बनाने पर जोर ले दी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराजल को की राज्य में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रेल कनेक्टिविटी और स्वरोजगार क्षेत्र में तेजिल विकासक काम होनई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 9 सालों में बहुत सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी करी गई।
1: पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के एकेश्वर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर शुभारंभ करते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराजल कौश की एकेश्वर विकास खंड में पिन्ने पानी, सड़क और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं में काम करी गो। उन्होंने कौश की अलग अलग पिन्ने पानी योजनाओं, मोटर मार्गों, पंचायत भवनों और सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र की जनता के भल सुविधा उपलब्ध कराई जन हैं। बहुउद्देशीय शिविर के दौरान जन सुनवाई ले आयोजित करी गए। शिविर में 19 दिव्यांगजनों के विकलांग प्रमाण पत्र, वाणी ज्ञान, वहीं शिकायत काउंटर में 58 शिकायतों और 55 मांग पत्र मिल्यान जनों के निस्तारण के लिए विस्तृत जुड़िया अधिकारियों के निर्देश दिए गए। शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, समाज कल्याण, विद्युत और जल संस्थान से जुड़िया अलग अलग विभागों स्टॉल लगावे लोगों के योजनाओं की जानकारी दे। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष बैठी श्याम भट्ट।
0: प्रमुख सचिव आनंद वर्धनन प्रदेश में खाद्यान्न और दैनिक उपयोगक जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता तथा कीमतों की समीक्षा ले करी। सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों दे आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य स्थिति की जानकारी ली। बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामल विभागक अधिकारी मौजूद रही। मुख्य सचिव निर्देश दी कि आमजनक रोजमर्रा जरूरी वस्तुएं उचित दरों पर शांत रूप उपलब्ध हों, यह लीजिए नियमित निगरानी सुनिश्चित करी जाओ। उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और दोहर उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता तथा कीमतों पर लगातार नजर रखी जाओ, जल की लोगन के को प्रकारक परेशानी का सामना नहीं करन पड़ो। श्री वर्धनन जरूरी वस्तुओं कालाबाजारी, जमाखोरी और कृत्रिम अभाव पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश ले दिए। यह लीजिए बाजारों, गोदामों और थोक विक्रेताओं के नियमित जाँच करने के लीजिए कई जरो। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार बाजार व्यवस्था के सुचारू बनाए रखन और आम जनता के राहत ऋणक लीजिए वचनबद्ध छू। उन्होंने सभी जनपदों, विशेष रूप से चारधाम यात्रा बटी जुड़ी जिलों में जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने लीजिए ले को और कोले प्रकारक अनियमितता मिलने पर फौरन कार्रवाई करने के निर्देश ले दिए। राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी यमकेश्वर में इतिहास विषयक

0: असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमेश त्यागी के फर्जी शैक्षणिक कागजातों के आधार पर नौकरी पाणक मामला सेवा बटी बर्खास्त कर दी गो। विभागीय जांच में उनर बीए प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्षक अंक तालिकाओं में गंभीर विसंगतियां पाई गई। उच्च शिक्षा विभाग अनुसार कागजातों सत्यापन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ बटी कराई गो, जहाँ प्रस्तुत अंक प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय अभिलेखों बटी मेल निखाई। जांच दौरान डॉक्टर त्यागी के अपुपक्ष रखना मौके दी गो, लेकिन वो स्पष्टीकरण दिनक लीजी उपस्थित नहीं आई। विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्तगी प्रस्ताव उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के भेजी गो, जैके उन्होंने मंजूरी दी दी। यह एक बार डॉक्टर त्यागी सेवाएं तुरंत प्रभाव बटी समाप्त कर दी गई।
1: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: उत्तराखंड में मौसमक बदली मिजाजल एक और लोगन के गर्मी और वनाग्नि बटी राहत दी है, तो वहीं कई क्षेत्रों में तेज बयाव औद्योग कारण बिजली आपूर्ति और यातायात व्यवस्था ले प्रभावित हुई छु। हालांकि प्रशासन और संबंधित विभागों तुरंत कार्रवाई ज्यादातर जागों में स्थिति सामान्य

0: बटी राहत दी है, तो वे कई क्षेत्रों में तेज बयाव औद्योग कारण बिजली आपूर्ति और यातायात व्यवस्था ले प्रभावित हुई छू। हालांकि प्रशासन और संबंधित विभागों तुरंत कार्रवाई ज्यादातर जागों में स्थिति सामान्य कर हली। प्रस्तुत छू एक रिपोर्ट।
1: पौड़ी जिले में ब्यावरात तेज हवाओं और बरखक कारण कई जगह में बिजली की लाइन और पोल टूट गया। जल बिजली की आपूर्ति प्रभावित भैच। बिजली विभाग की टीमों जल्दी मरम्मत काम शुरू करी और अधिकांश जगह में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी। कुछ जगह में मरम्मत काम आइले चलियो को छे। वहीं ढाप खाल देवियो खाल मोटर मार्ग में मल्लू और पत्थर ऊनल यातायात प्रभावित भौच। जैके हटावेर बाटके हल्के वाहनों के लिए सुचारू कर दी जा रो। टुटक पेयजल पाइपलाइन के लिए मरम्मत करी जन लग रहे। चमोली में देर सांझ बखत भई बरखल तापमान में गिरावट दर्ज करी गई। एक दगड़ लंबे बखत बठी जंगलों में लग गया आग मले बहुत हद तक काबू पाई गो। वन विभाग के अनुसार कई जगह में आग अभी बुझ गई छी और बना गए घटनाओं में कमी आया छी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष बठी श्याम भट्ट।
0: यो बीच राज्य कुछ हिस्सों में आने वाले दिनों में ले द्योग संभावना छो। मौसम विभाग राज्य कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि और आधिक येलो अलर्ट ले जारी कर रहा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और नैनीताल जिले के सभी वन प्रभागों में हाथियों गणना काम जारी छू। यह अभियान 26/30 मई ताले चलाई जल। जैक अंतर्गत सभी बीटों में हाथियों की संख्या और उनर गतिविधियों का आकलन करी जानो। यह काम में 150 अभी ज्यादा वन कर्मी और विशेषज्ञ जुटी हुई छन। एक रिपोर्ट।
1: कार्बेट टाइगर रिजर्व में हाथियों की गिनती वैज्ञानिक तरीके करी जन लग रहे। एक निजी भारतीय वन्य जीव संस्थानक सहयोग अलग अलग टीमों का गठन कर रहा। इन टीम हाथियों गतिविधियों झुंडों की संख्या और उन्होंने रोने वाले क्षेत्रों का रिकॉर्ड तैयार करने लग रहे।
2: इस बार हम लोग एलिफेंट सेंसस में फिजिकल के साथ साथ एम स्ट्राइप्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो भी गणना का कार्य हो रहा है वो मोबाइल में एक ऐप है एम स्ट्राइप्स करके, उसकी मदद से किया जा रहा है। एक तरीके से सारा डाटा जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में कलेक्ट हो रहा है। एक तो सूचनाओं का आदान प्रदान फास्ट होता है, एनालिसिस फास्ट हो जाता है और आप इस डाटा को फिर लंबे समय तक एक साथ संधारित कर सकते हैं।
1: वहीं तराई केंद्रीय वन प्रभागक प्रभागी वनाधिकारी यूसी तिवारी बतास की गिनती कामक लिजी कर्मचारियों का विशेष प्रशिक्षण दिए जा रहे। जल की आंकड़ों का संग्रहण बहुत भल तरीकल करी जा सको।
2: इस बार हम लोग एलिफेंट सेंसस में फिजिकल के साथ साथ एम स्ट्राइप्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो भी गणना का कार्य हो रहा है वो मोबाइल में एक ऐप है एम स्ट्राइप्स करके, उसकी मदद से किया जा रहा है। एक तरीके से सारा डाटा जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में कलेक्ट हो रहा है। एक तो सूचनाओं का आदान प्रदान फास्ट होता है, एनालिसिस फास्ट हो जाता है और आप इस डाटा को फिर लंबे समय तक एक साथ संधारित कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष बैठी श्याम भट्ट।
0: भारतीय रिजर्व बैंक का मार्गदर्शन में राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर और SBI RCT में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करी गो। शिविर में विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्वयं सहायता समूह श्रेणियों और आम नागरिकों के बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल लेन देन और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करी गो। शिविर में प्रतिभागियों के KYC अनिवार्यता, VKYC प्रक्रिया, केंद्रीय KYC और सुरक्षित बैंकिंग व्यवहारक जानकारी दी गई। दगड़े ही डिजिटल लेन देन दौरान बढ़ती चढ़वल सावधानियां और फर्जी कॉल, मैसेज और संदिग्ध लिंकक माध्यमल हुण व साइबर ठगी बटी बचावक उपाय ले बताई गई। आगामी कांवड़ मेल लग तैयारियां के लिए हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित तक अध्यक्षता में बैठक आयोजित करी गई। यह दौरान जिलाधिकारी संबंधित विभागों के सड़कों की मरम्मत और सड़क सुरक्षा नियमक सख्ती पालन करने का निर्देश दिए। उन्होंने कांवड़ मेल हबीर पहली सभी सड़कों के गड्ढा मुक्त करने पर ले जोर दी। सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण अनुसरण समिति की बैठक में जिलाधिकारी लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिकारियों के निर्देश दिए कि उन्हें अगर आने वाले सभी सड़कों पर पैचवर्क और मरम्मत काम प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करी जाओ। जिलाधिकारी सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लीजिए, तेज रफ्तार, शराब पी बीर वाहन चलान, ओवरलोडिंग करण, बिना हेलमेट वाहन चलान और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दी। दगड़े ही सड़कों पर अतिक्रमण न होने देने के लिए जिले संबंधित अधिकारियों के आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कौ। आखिर में मुख्य समाचार आई सुनो। दून विश्वविद्यालय में ब्रिक्स अकादमिक मिड टर्म सम्मेलन 2026 का आयोजन। वैश्विक चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास बटी जुड़ी मुद्दों पर विशेषज्ञों विचार विमर्श करो। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराजल को की राज्य में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रेल कनेक्टिविटी और स्वरोजगारक क्षेत्र में तेजिल विकास काम हुई है। मुख्य सचिव आनंद वर्धनल प्रदेश में आवश्यक

0: वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों की समीक्षा करी। कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई और नियमित निगरानी के निर्देश दी। और उत्तराखंड में दियो और तेज बयावल गर्मी तथा वनाग्नि बटी राहत। कुछ क्षेत्रों में बिजली और यातायात प्रभावित, अधिकांश जगहों में स्थिति सामान्य। यह कदगढ़ ही कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार के अंक ये समाप्त हो। नमस्कार।
1: एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं रदर फिल्म के गीत के साथ। गीत को आवाज दे रहे हैं अजय चक्रवर्ती और परवीन सुल्ताना। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत की धुन बनाई है उत्तम सिंह ने।

अजय चक्रवर्ती और परवीन सुल्ताना का गाया गदर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए आपको सुनवाते हैं सुनिधि चौहान और सोनू निगम का गाया बनारस फिल्म का गीत। गीत लिखा है समीर ने और इस गीत की धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

बनारस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए आपको सुनवाते हैं राहत फतेह लिखा, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा का गाया, माई नेम इज खान फिल्म का गीत। गीत लिखा है निरंजन ए अंगर ने और इस गीत की धुन बनाई है शंकर एहसान और लॉय ने।

माई नेम इज़ खान फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए फिल्म संगीत कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं रिचा शर्मा का गाया जुबैदा फिल्म का गीत। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और इस गीत की धुन बनाई है AR रहमान ने।

ऋचा शर्मा को भी आपने जुबैदा फिल्म में सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, लीजिए पेश है मिले जुले गीत गजलों का प्रोग्राम सबरस। आज के सबरस प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं अभिजीत सावंत के गाए इस गीत के साथ।

0: केके का गाया ये गीत अभी आपने सुना। आइए सब दस प्रोग्राम में अब आपको सुनवाते हैं गुलजार का कलाम। फनकार हैं जगदीश सिंह।
1: याद है एक दिन मेरे मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। आकर देखो उस पौधे पर फूल आया।

जगजीत सिंह की गाई ये गज़ल अभी आपने सुनी। आइए सबरस प्रोग्राम में अब आपको सुनवाते हैं गुलजार का कलाम। फनकार हैं भूपिंदर सिंह।

तलत अज़ीज़ की गाई ये गज़ल अभी आपने सुनी। आइए सबरस प्रोग्राम के समापन में आपको सुनवाते हैं बशीर बद्र का कलाम। फ़नकार हैं ए हरिहरन।

बशीर बद्र का कलाम अभी आपने सुना। फनकार थे ए हरिहरन। इसी के साथ आज का मिले जुले गीत गजलों का प्रोग्राम सबरस अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी कल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 8:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
1: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also advanced to semi-final. And in IPL cricket, crucial qualifier 2 match under

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट अकेडमी की शुरुआत की।

चोर मचाए शोर। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया काला बाजार फिल्म का गीत। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और इस गीत की धुन बनाई है SD बर्मन ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने काला बाजार फिल्म का गीत सुना। आइए इंद्रधनुष कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार का गाया ब्लैकमेल फिल्म का गीत। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और इस गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

ब्लैकमेल फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम इंद्रधनुष अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 9:30 हुए हैं। तीजे पेश है फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आपके अनुरोध पर।

फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ हाजिर है आपका दोस्त भास्कर साह। सभी श्रोता मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आदाब व सलाम। दोस्तों, बहुत ढेरों फरमाइशों के साथ

हम अपने इस कार्यक्रम में हाजिर हुए हैं और सभी श्रोता मित्रों को हम ये बता दें कि आज कल जो भी फरमाइशें हम तक पहुंचती हैं वो सभी व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पहुंचती हैं। अगर आप भी अपनी फरमाइश के फिल्म नगमे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411001120112 इस नंबर पर मैसेज भेजकर अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं और हम आपकी उन प्यारी सी फरमाइशों को अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। जैसे आज जो फरमाइशें हम तक आई हैं वो हम पहुंचा रहे हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक। तो आज के कार्यक्रम की पहली फरमाइश जो हमें भेजी है वो भेजी है MLB रोड ग्वालियर से भेजने वाले हमारे श्रोता हैं सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू, SK पप्पी खुराना। आप सभी सुनना चाहते हैं पेइंग गेस्ट फिल्म का गीत। बहुत सुंदर गीत की आपने हमसे फरमाइश की है। गीत को आवाज़ दे रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और इस गीत की धुन बनाई है SD बर्मन ने। तो लीजिए आप सभी दोस्तों की फरमाइश पर पेश है पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गीत।

किशोर कुमार और आशा भोसले को भी आपने पेइंग गेस्ट फिल्म में सुना। आइए शामिल करने जा रहे हैं अगली फरमाइश जो हमें भेजी है धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और कुमारी क्रिस्टी पटवा। आप सभी सुनना चाहते हैं संग्राम फिल्म का गीत कुमार सानू और पी सुनंदा की आवाज़ों में। गीत लिखा है समीर ने और इस गीत की धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। तो लीजिए आप सभी श्रोता मित्रों की फरमाइश पर पेश है संग्राम फिल्म का ये गीत।

संग्राम फिल्म का गीत अभी आपने सुना। फरमाइशी फिल्म नगमों का प्रोग्राम आपके अनुरोध पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से, और कार्यक्रम में मैं हूं आपका दोस्त भास्कर सा। आइए शामिल करते हैं अगली फरमाइश जो हमें भेजी है नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। आप सभी सुनना चाहते हैं हरियाली और रास्ता फिल्म का गीत। गीत को आवाज़ दे रहे हैं मुकेश, गीत लिखा है शैलेंद्र ने और इस गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। तो लीजिए आप दोस्तों की फरमाइश पर पेश है हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गीत।

हरियाली और रास्ता फिल्म के इस गीत के बाद शामिल कर करते हैं अगली फरमाइश जो हमें भेजी है लाला बाजार अल्मोड़ा से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं बाबा फरहान, खुशबू, संजू, सामिया, आफिया, मुमताज़ ज़मान, माही, नीलोफर, शन्नो और शब्बो। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है दुबिहा नेवादा ज़िला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी वलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़ के रोहिदास चौक पंडरपुर शहर से। आप सभी लोग सुनना चाहते हैं चांदनी फिल्म का गीत, बहुत सुंदर गीत की आपने हमसे फरमाइश की है। गीत को आवाज़ दे रहे हैं सुरेश वाडिकर और अनुपमा देशपांडे। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत की धुन बनाई है शिव हरि ने। तो लीजिए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर पेश है चांदनी फिल्म का ये गीत।

चांदनी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए आज की फरमाइशी प्रोग्राम में आखिरी फरमाइश के रूप में शामिल करने जा रहे हैं, जो फरमाइश वो हमें भेजी है रोहिदास चौक से, और गीत सुनना चाहते हैं मयंक, दीपिका, उमेश और मीरा। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है ग्राम असौटा पोस्ट ऑफिस ढौरा से नारायण थापा, नीलिमा थापा और जयसूर्या थापा। देहरादून से गौरव जोशी, गरिमा जोशी और दीक्षा पांडे। आप सभी लोग सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण का गाया दिल तो पागल है फिल्म का गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत की धुन बनाई है उत्तम सिंह ने। तो लीजिए आप सभी दोस्तों की फरमाइश पर पेश है दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर और उदित नारायण को अभी आपने दिल तो पागल है फिल्म में सुना। इसी के साथ फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आपके अनुरोध पर अब यहीं पर संपन्न होता है। अगले शुक्रवार को रात्रि 9:30 पर फिर आपकी ढेरों फरमाइशों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र भास्कर शाह को कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। शुभरात्रि, शब्बा खैर।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आपके अनुरोध पर FM 100.8 MHz पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं नुसरत फतेह अली खां और मुजाहिद अली मुबारक खां की गाई कव्वाली के साथ।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वहीं देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

अमीर खुसरो का कलाम अभी आपने सुना, फनकार थी आबिदा परवीन। आइए सुगम संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कतील शिफाही का कलाम, फनकार हैं जगजीत सिंह।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की गाई गज़ल अभी आपने सुनी। इसी के साथ सुगम संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सलमा आगा के गाए निकाह फिल्म के गीत के साथ। गीत लिखा है हसन कमाल ने और इस गीत की धुन बनाई है रवि ने।

निकाह फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास का गाया हीरो फिल्म का गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर और मनहर उदास को भी आपने हीरो फिल्म में सुना। आइए शामिल करते हैं अगली फरमाइश, अगली पेशकश जो हम शामिल करने जा रहे हैं, नदिया के पार फिल्म से। गीत को आवाज दे रहे हेमलता और जसपाल सिंह, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

नदिया के पार अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आइए फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कश्मीर की कली फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। गीत लिखा है SH बिहारी ने और इस गीत की धुन बनाई है OP नैयर ने।

कश्मीर की कली फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए फिल्म संगीत कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं आई मिलन की रात फिल्म का गीत। गीत को आवाज़ दे रहे हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और इस गीत की धुन बनाई है आनंद मिलन ने।

0: आई मिलन किरान। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 11 बजे हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले के जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज़ को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताज़ा समाचार मिले तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।